हर प्राप्ति गुरु दी सिख्या दी मोहताज है। जीवन दा हर कर्म कुछ लोड़दा है। ये जीवन जिवें पिछले दिनों विच चल रही है, एक लड़ीवार चल, कर्म बंधन है, कर्म खेतर है। हर कर्म कुछ लभदा है, कुछ लोड़दा है। बिना किसी प्राप्ति दी लोचा दे मनुख कुछ भी करन लई तैयार नहीं। चंगा जमंदा, अच्छा जा बुरा, कोई भी कर्म है उनके पिछे किसी प्राप्ति दी लोचा खलोती है। जेड़ा बुरा कर्म है उनके पिछे भी प्राप्ति दी लोचा खलोती है। चोर चोरी कर रहा है पर किसी प्राप्ति दी लोचा नहीं कर रहा है ना। जो कुछ मनुख करता है उसे कर्म आखते हैं। कर्म नाल सत्ता जुड़ जाए तो कर्म बन जाता है, कर्म नाल वाह वाह जुड़ जाए विकर्म बन जाता है। कर्म ने सुकर्म भी बनना है, कर्म ने विकर्म भी बनना है। जिमें पिछले दिहाड़ियों विच दीवाना विच एक गल आई सी, कर्म बदलता है। क्योंकि संसार खेत्र का हिस्सा है ना, दिखने वाले खेत्र का हिस्सा है, इसलिए संसार खेत्र की हर एक चीज बदलती है। समय नाल स्थान नाल, समय स्थान का असर कबूलती है, उनके नाल बदलती है। तो कर्म क्योंकि संसार खेत्र का हिस्सा है, जदों मनुख इस धरती पर कदम रखता है तो कर्म शुरू होता है। जदों इस शरीर धरती तो निकल जाता है, कर्म भी नाल ही खत्म हो जाता है। हाँ, जो कुछ कर चुका होता है उनका आदर्श नाल रह जाता है। हुण बाकी कोई चांस नहीं रहिंदा होर करन दा। बाबा कबीर ने एक थावें बड़ी खूबसूरत एग्जाम्पल दी इस संबंध में, कहने लगे।

अगला पद दे दे। कहने लगे खोई दे किनारे से जाके देख ले, तट से मन से जाके देख ले। पुराने समय अंदर खोई एक साधन सन पानी दे, ते सारे नगर विच कोई एक अद्ध खूह हुंदा सी जिंदे तो लोग पानी भरते सन। जात पात के मसले से कई बार जिन्हां नूं नीवां समझिया जांदा सी उन्हां नूं अपने वक्रे खूह बनाने पैंदे सन। ओ उच्ची स्वर्ण जाति वाले हंकारी लोग जिहड़े सन उत्थों पानी नहीं सन पा सकते, साधन खूही सन। पानी हार कहिंदे ने जिगरी नूं। उन्हों का काम होंदा सी अमीर घरां वड्डे घरां दा पानी भर के उन्हों के घर पहुँचाना, उन्हों पानी हार आखते सर। बाबा कबीर एक एग्जाम्पल देंगे, कहते ने खूह के किनारे पर जाके देख लै पानी हार पानी भरन आई है। उन्हें डोल नाल लज बनी, लज बन के रस्सी बन के उन्हें खूह विच्चों पानी खिंचना शुरू।

खींचता है, एग्जाम्पल देते हैं, खूब चुपानी खींचना शुरू की, पानी भरती रही, खिच खिच अपने घड़िया में पाँदी रही, अचानक लज टुट गई, रस्सी कस कस के टुट जाती सी, कसदी है होया कि लज टुट गई, तो लज टुटन की देर से डोल विच रह गया, खूह के ही रह जाते, वह पानी हार जिन्ना पानी भर चुकी सी बेचारी, हुण होर भरना भी चाहे तो भरन का चांस कोई नहीं, क्योंकि लज टुट गई है, खूह विच डोल डिग पे, जिन्ना क भर के रख चुकी सी उन्ना क लैके तुर पई। एक एग्जाम्पल दे रहे, कहते भाई दुनिया के लोगों में जो संसार वाल देखना यह कहानी मैं रोज दिस रही है, इस संसार जरा कर्म खेत्र है यह भी एक खूह है, एक खूह है, तो जीव आत्मा इतने आई है विकर्मा या सुकर्मा का पानी भर इकट्ठा कर, स्वास्थ्य की लज नाल इनका देह का शरीर का कर्म खेत्र का डोल बनिया होया, स्वास्थ्य की लज नाल कर्म खेत्र का डोल बजिया होया, इस संसार के खूह विच्चों विकर्मा या सुकर्मा का पानी भर रही है, भरदियां भरदियां अचानक स्वास्थ्य की लज टुट जाती है, स्वास्थ्य की लज टुट गई, इस शरीर देह का डोल जिहड़ा सी इस संसार विच ही रह गया, इन्हू भी नाल ना ले जा सकी, गुरु ने बाहीं चक दिता, जो तन उपजिया संघ ही सो भी संघ ना हो, जिन्हू लैके संसार विच आया से उन्हू लैके नहीं जा सकिया, पानी हर जिस डोल नू नाल लैके आई सी जान लगे और डोल भी गवा बैठी, बाबा कबीर ने आख्या कह लगे झूरी पानी हर जीव आत्मा जिन्ना क विकर्मा या सुकर्मा का पानी भर चुकी सी, भर के लैके तुर भी बनी, बस होर कोई चांस नहीं, होर भर लै, क्योंकि लज टुट गई है डोल डिग पे है।

बस ये है इनकी कहानी। इन कर्म खेत्र संसार विच आके कर्म करना है, कुछ करना है, लेकिन एक ख्याल करियो, वो कर्म जेड़ा सुकर्म भी हो सकता है, विकर्म भी हो सकता है। कर्म नहीं, कर्म रहने, पर उनके विच चेंज आ सकती है, बदलाव आ सकता है, बदल सकता है। जिमें कल भी लफज आए सन, हुक्म बदलता नहीं, कर्म बदलता है। हम देखना ही है कि बदलता किमें है, इनका मतलब कर्म लई किसे भी अगवाई की लोड़ है, हुक्म लई नहीं। हुक्म तो केवल समझना, वो मनन पैना, उन्हें बदलना नहीं, तेनों उनके अनुकूल अपना कर्म करना पैना। ये पिछले नाल लड़ी चल रही हूं, जो कर्म खेत्र बदलने का मसला है, उनके वास्ते अगवाई की लोड़ है। ते उस अगवाई का ना ही सिख्या, उनका ना ही सिख्या। तो जीवन के हर खेत्र विच भावें दुनियादारी का खेत्र होवे, स्वार्थ का खेत्र होवे, ते भावें परमार्थ का खेत्र होवे, कर्म तो दोवां पासे होने, इस वास्ते दोवां पासे ही अगवाई की लोड़ है। नहीं तो कर्म जेड़ा है विकर्म बदलने की बजाय, सुकर्म बदलने की बजाय विकर्म बदल जाए, गुना हो जाएगा, वो दूर ले जाएगा, नेड़े नहीं आने देगा। हम उस कर्म खेत्र की दुनिया में मनुख जेड़ा धर्मी है, जेड़ा आस्तिक है, जेड़ा अपने आप को धर्मी समझता है, वो क्योंकि जे गुरु की सिक्ख्या नहीं लैंदा, अगवाई नहीं लैंदा, कर रहे हैं धर्म के कर्म बिना शिक्षा तो। सतगुरु ने बाणी अंदर एक नहीं अनेक एग्जाम्पल दी, कह लगे

0: तट तीरथ सब धरती पर मेओ डुबदा छुट कह नाही मन कामना तीर्थ जाय बसे फिर करवत धराय मन की मैल ना उतरे बिद जे लख जतन कराय।
1: ये ऐसा हो सकता है केवल तीर्थ से स्नान करन नाल पवित्र हो जाईदा है तो फिर उन्हां तीर्थां ते उन्हां पानियां विच मेंढक ते डड्डू भी रहिंदे ने ओह दिन रात ही नहाउंदे ने दिन रात ही स्नान करदे ने ओह ते मुक्त नहीं हो गए भला कि नहीं हो सकता है ख्याल करियो मत समझो आपां किसे ते क्रिटिसाइज कर रहे अपने ते भी देखना साडे विच भी इस सुभाव ते आदतां मन मत आ रही है वो परम साडे विच भी पैदा हो रहे हैं। हालांकि गुरु ने बाणी अंदर बड़ा स्पष्ट किया कहने लगे मैं स्थान ते स्थानियां दोनों नूं नहीं मंनदा मैं तां सिद्धांत नूं मंनदा किसे स्थान ते होवे उसे सिर चुकाए कोई मनुख सिद्धांत का प्रचारक होवे उन्हें भी सिर चुकाए स्थान ते स्थानियां का मतलब केवल व्यक्ति ते स्थान नहीं सिद्धांत है। गुरु ने एक लाइन अंदर फैसला कर दिता कहने लगी

क्योंकि उस सिक्ख्या तो विहार ने जन्म लेना है, कर्म ने जन्म लेना है, तो कर्म से ही निर्भर होना है, बिन कर्म के मिले नहीं। मत विच रतन जुबा

0: पत्थर पुछतनी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।
1: फिरत प्रभु आया पर्यात तौ शरणाए नानक की प्रभु बेनती अपनी भगती लाए अगम अगोचर सच साहेब मेरा नानक बोलै बोलाया तेरा नानक बोलै बुलाया तेरा वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। शब्द गुरु तख्त छतर चवर दे मालक धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र हजूरी दे अंदर सुभाईमान गुरु सुवारे प्रेमी सतसंगी जनो वड भागे हो आप जी सतगुरां दी कृपा द्वारा साहिबां दी पावन हजूरी विच सत संगत करन दा सुभाग आप जी नूं प्राप्त होया है। गुरबाणी कीर्तन गुरु सुवारे गुरु के कीर्तनिया पासों आप जी ने सरवन कीते हन। अमृत वेले सचखंड श्री हरिमंदर साहब जी दे अंदर तखत ते सुभाए मान होके धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज सच्चे पातशाह जी ने जो मुख वाक हुक्मनामा साढ़े सारियां उत्ते कृपा कीती है गुरु घर की मर्यादा मुताबक गुरुद्वारा मंजी साहब दीवान हाल विखे आप जी पावन शब्द की विचार सरवण करन दे लई सतगुरां दी पावन हजूरी दे अंदर जुड़े हो। देश विदेश दे अंदर इस समय दी उड़ीक कर रहे पीटीसी वालों लाइव प्रोग्राम दे राही सारे स्रोता जन गुरु चरणा दे अंदर जुड़न वाले आते अपने अपने स्थाना ते बैठे हुए सारे प्रेमी जन ध्यान अपना गुरु के चरणा नाल जोड़ो सुरतियां नू टिकाओ एक बारी रचना करो पवित्र गज के बोलो सतनाम वाहेगुरु। पावन शब्द सूही राग दे अंदर भगत बाणी दे सरलेख हेठ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਅੰਗ 794 ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਆਓ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰੀਏ। ਵਿਚਾਰ ਰਹਾਉ ਦੇ ਪਦੇ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰਨੀ, ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾ ਜਨ ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਰਸਨਾ ਰਾਹੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ।

0: बीत जय है, बीत जय है जन्म अकाज रे। जोबन खोए पाछे पछताने, बीत जय है, बीत जय है जन्म अकाज रे। निस दिन सुन कै पुराण, समझत नै रे अजान। काल तो पहुंचो आन, कहां जहे पाज रे। महाराज कृपा करते ने, बैठी जात कदे दृष्ट ना तारत। उम्र बीत रही है पर इस बंदे का कदी इस पासे वल ध्यान नहीं आता। बैठी जात कदे दृष्ट ना तारत, मिथ्या मोह बंधे नित पारत। सत्संगत महाराज भी आखते ने, बालपन हमेशा नहीं रहना, जवानी हमेशा नहीं रहनी, बालपन तो बाद जवानी, जवानी तो बाद बुढ़ेपा। पर चेते रख तिन्ना अवस्था दे अंदर जे मालक दी सार नहीं लई, बालपन भी अजाई, जवानी भी अजाई, बुढ़ेपा भी अजाई चला गया। ते जे सार ले ली फिर 9 साल ते 7 साल दी उम्र दे अंदर बालपन भी सकारता है, फिर जवानी दे अंदर सार मालक दी ले ली। गुरु अमरदास ते बाबा दीप सिंह जी दी तरह मालक दी सार ले ली ते फिर बुढ़ेपा भी सकार था है। तिनी तो महाराज आखदे ने, बाल जवानी अर बिरध फुन, तीन अवस्था जान, कौ नानक हर भजन बिन, बिरथा सब ही मान। ऐ मालक मैं तेरी सार नहीं लई, सार नहीं जाती, जोबन मेरे हथों चला गया, जवानी मेरे हथों चली गई है, हुण मेरे कोल रह की गया केवल पछतावा, हुण मेरे कोल रह की गया केवल ते केवल पछतावा रह गया। बाबा फरीद जी रहाओ दे बंद अंदर कृपा कर दे ने,
1: एक ओंकार सतगुर प्रसाद।
0: वाहिगुरु एक है, सारियां शक्तियां दा मालक है, सर्व व्यापक सतगुरु दी कृपा नाल प्राप्त होंदा है।
1: राग सूही बाणी शेख फरीद जी की।
0: ए बाणी ए शब्द शेख फरीद जी दा सूही राग दे अंदर दर्ज है।

होए। जेवड़ आप तेवड़ तेरी दात, जैन देन करके की ती रात। खासम विसार हैं ती कम जात, नानक नावे बाज सुनात। राग गुजरी महला चौथा, हर के जान सतगुर सतपुरखा। बिनों करो गुर पास, हम कीरे किरम सतगुर सरनाई। कर दया नाम प्रगास, मेरे मीत गुरदेव मोह कौ राम नाम प्रगास। गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई, हर कीरत हमरी रहरास। राव हर जन केवड़ भाग वडेरे, जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास। हर हर नाम मिले तृपदास हैं, मैल संगत गुण प्रगास। जिन हर हर हर रस नाम न पाया, ते भागहीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जैन हर जन सतगुर संगत पाई, तैन तुर मस्तक लिखिया लिखास। तन तन सत संगत, जित हर रस पा।

यतवाय उद्यम जा आहरु हर जियो परया शैल पत्थर में जंतो पाए तांका रिजक आग कर धरया मेरे माधव जी सतसंगत मिले सो करया गुर प्रसाद परम पद पाया सुके काष्ट हरया रहाउ जनन पिता लोक सुत बनेता कोई ना किस की धरया।

सतगुरु प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब त्याव हैं सब त्याव हैं तुद जी।

हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी, क्या नानक जंत बिचारा। तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी, हर एको पुरख समाणा, एक दाते एक पेखारी जी, सब तेरे चोज बढ़ाना। तू आपे दाता आपे भुगता जी, हौ तुद बिन अवर न जाना। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुण आख बखाना। जो सेव है जो सेव है तुद जी, जन नानक तिन कुरबाना। हर त्यावहि हर त्यावहि तुद जी, से जन जुगमह सुखवासी। से मुक्त भए जिन हर त्याया जी, तैन तूटी जमकी फासी। जिन निरपौ जिन हर निरपौ त्याया जी, तिनका पौ सब गवासी। जिन सेव्या मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी। से तन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी।

केवल नाम। सरंजा मिलाग भव जल तरन कै, जन्म मृथा जात रंग माया कै राऊ। जप तप संयम धर्म ना कमाया, सेवा

काश भेद न जानत महादेव कौ कहत सदा सेव निरंकार का चीनत न पेव आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत पिन पिन तोह तेती तुमरा लखा न जाय पसारा केहे विद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप सुरूपा रंग भयो रव कही पूपा अंडज जेरज सेतज केनी ओत पुज खान बहोर रच देनी कहूं भूल राजा हव बैठा कहूं सिमट भयो शंकर कैठा सगरी श्रेष्ठ दिखाई जम पव आदि जुगाद स्वरूप सुयम पव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संग्रह दोष जित उठ बत उत पाता सकल मलेश करो रण काता जे अस तुझ तब शरणी परे तिनके दोष्ट दुगत हवै मरे पुरख जवन पग परे तिहारी तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार ते आए हैं ताके काल निकट नह आए हैं रक्षा होए ताही सब काला दोष अरेष्ट टरें तत्काला

कर्म सब होई, दुष्ट शास्व सगन कोई। एक बार जन तुम्हें संभारा, काल फास दे ताहे उभारा। जैन नर नाम तिहार कहा, दारिद दोष्ट दोख तेरा। खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी, आप हाथ दैले उभारी। सर्ब ठौर मोह सहाई, दोष्ट दोख ते ले बचाई। सवैया पाई गहे जब ते तुमरे, तब ते को आंख तरे नहीं आने। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहें मत एक ना मान्यो। सिमरत शास्त्र भेद सब है, बहु भेद कहें हम एक ना जान्यो। सरी असपान कृपा तुमरी कर, मैं ना कहूं सब तोहे बखान्यो। दोहरा

त्योहार राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरु तां पाया सहज से ती मन वजियां बधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावने आईया शब्दों तांगा वो हरि केरा मन जिनी बसाया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार ओ करे तेरा कारज सब सवारना सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे

मेरा आधार, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखां सब गवाइया, कर शांत सुख मन आए वसया, जिन इच्छा सब पुजाइया, सदा कुर्बान कीता गुरु विटहो, जिस दियां ही बड़े आईया, कह नानक सुनो संत शब्द धरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधार। वाजे पंच शब्द तद कर सभागे शब्द वाजे, कला जित कर धारिया, पंच दूत तुद वस कीते, काल कंटक मारिया, तुर कर्म पाया तुद जिन कौ, से नाम हर कह लागे, कह नानक तह सुख हुआ, तित कर अनहद वाजे, अनद सुनो बडभागी हो, सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया, उतरे सगल विसूरे, दुख रोग संताप उतरे, सुनी सची बाणी, संत साजन पै सरसे, पूरे गुरते जानी, सुनते पनीत कहते पवित, सतगुर रहया पर पूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूरे। मुंडावणी महला पंजवां, थाल विच तिन

जिसका सबसे आधारो जे को खावे जे को पुंचाए तिसका हो उधारो यही वास्तव तजी न जाई नित नित रख और धारो तम संसार चरण लग तरिए सब नानक

जत सेवै सुख पाए नानक गुरमुख मिल रहे हमें शब्द जलाए। महला तीजा आपे सेवा लायन आपे बख्श करे।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु शब्द उच्चार दारे वाहेगुरु वाहेगुरु शब्द नु उच्चार दारे वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु शब्द

अरे तुरी संगत कश्मीर तो राल कदम उठा ले, तुरी संगत कश्मीर तो राल कदम उठा ले, भेटा करने गुरा दी बही भेटा करने, ओ भेटा करने गुरा दी ओ ना तिल दुशाले, भेटा करने गुरा दी ओ ना

छे में सतगुर पातशाह मीरी पीरी वाले, छे में सतगुर पातशाह मीरी पीरी वाले। ओ दशरथ कने गुरां दे होए मतवाले।

खो ना मायूस, मोहब्बत का सिला मिलता है। खो ना मायूस, मोहब्बत का सिला मिलता है। बंदगी करने से कहते हैं खुदा मिलता है। गुरु दे सिख बहुत ही प्यार नाल धारना पढ़ते हुए, शब्द गाते हुए, कीर्तन करते हुए काफलियां दे रूप विच सतगुर दे दरबार विच जाया करते सन। दर्शन देख जीवा गुर तेरा, पूर्ण कर्म

विदा तेरिया दारंग विधि चंदा विदा तेरिया दारंग विधि चंदा असी लाके सवती ते परखड़ाए

पात्र पर भाने आने समी आज का पक्ष पर भाने आने समा प्यारे बहुत लखड़ा है बने आदी ओ पर बने आदी समा आज का पट पर बने आदी समा प्यारे आप हो

औखी सौखी नहीं, बड़ी औखी है। खंडे धार का मार्ग है। खालसाई विचारधारा से तुरना बड़ा कठिन से बड़ा निराला है। भगतां की चाल निराली, चाल निराली भगतां केरी, देखो मार्ग चलना। खंडियो निकी, खंडियो तिखी, वालों निकी, एक मार्ग जाना। एडी तिखी धार से तुरना किसे प्रेम विच मतवाले हुए सज्जन का ही कम हो सकता है। गिरि चंद नूं पता है कि मैं इकला हाँ, अगे दुश्मन बहुत गिनती विच ने, इकले भी बहुती अगे पेश नहीं जा करती, पर जंगे मैदान विच बहुत गिनती नहीं लड़ती। जंगे मैदान विच लड़दा मर्दां दा हौसला बहादरी उन्हां दा मर्दूपना। बाबा बिधि चंद सतना दियां बख्शिशां दे नाल इस तरह मालोमाल हुंदा जा रहा है।

होवेगी तेरी पर दान सिखा सेवा, होवेगी तेरी पर दान सिखा करी पापी जर मरेगी।

सेवा होगी तेरी पर वान सिखा वान सिखा वान सिखा सेवा होगी तेरी पर वान सिखा सेवा होगी तेरी पर वान सिखा करी पाती जरे

माता जी का कोरा जवाब सुन के जलाद परत आया। कंध मुकम्मल तैयार हो गई। साहिबजादे कष्ट सहारे हुए शहीदी पा गए। धरती कंब थी, आसमान डोल गया।

सतगुरु मिले उल्टी भई नवनिध खर्चो खाओ अठारह सिद्धि पिछे लगिया फिरन निज कर वसै निज साए अनहद तुनी सद वजदे उन मन हर लिव लाए नानक हर भगत तिना कै मन वसै जिन मस्तक लिखिया तुर पाए पौड़ी हों ताडी हर प्रभ खसम का हर कै दर आया हर अंदर सुनी पुकार ताडी मुख लाया हर पुछिया ताडी सद कै कित अरस तू आया नित देवो दान दयाल सब हर नाम ते आया हर दाते हर नाम जपाया नानक पैन आया सुध एक ओंकार सतगुरु प्रसाद श्री राज कबीर जीओ का एक स्वान कह कर गावना जननी जानत सुत बड़ा हो तो है इतना को न जाने जे दिन दिन अवध कटत है मोर मोर कर अधिक लाड कर देखत ही जमराओ हसे ऐसा तै जग परम लाया कैसे बूझे जब मोया है माया रहाओ कह कबीर छोड़ बिखिया रस इत संगत ने चो मरना रमैया जपो प्राणी अनत जीवन बाणी इन विद पव सागर तरना जात इस पावे ता लागे पाओ परम पुलावा विच्चों जाए उपजे सहज ज्ञान मत जागे गुर प्रसाद अंतर लिव लागे इत संगत नाही मरना हुकम पछाण ता खसमे मिलना रहाओ दूजा श्री राज त्रिलोचन का माया मोह मन अगलड़ा प्राणी जरा मरण पौ विसर गया कुटंब देख बिगसे कमला ज्यों पर कर जो है कपट नरा दूरा आयो हो जम है तना तिन आगलड़े में रहन न जाए कोई कोई साजन आए कहे मिल मेरे बीठला ले बाहरी वलाए मिल मेरे रमैया मैं ले छड़ाए रहाओ अनक अनक भोग राज बिसरे प्राणी संसार सागर पे अमर पया माया मूठा चेतस नाही जन्म गवायो आलसिया बिखम कोर पंथ चालना प्राणी रव सस तहना परवेशं माया मोह तब बिसर गया जा तजियले संसारं आज मेरे मन प्रगट भया है पेखियले तर्म राओ तह कर बल करन महाबली तिन आग लड़े में रहन न जाए जे को मुंह उपदेश करत है ता वन त्रिन रतड़ा नारायण ऐ जी तू आपे सब किछ जानदा बदत त्रिलोचन रामैया श्री राग भगत कबीर जीओ का अचरज एक सुनो रे पंडिया अब किछ कह न जाए सुर नर गण गंधर्व जिन मोहे त्रिभुवन मेखली लाए राजा राम अनहद किंगरी बाजे जाकी दिस्त नाद लिव लागे रहाओ पाकी गगन सिंगिया अर चुंगिया कनक कलश इक पाया तिसमें तार चुए अत निर्मल रसमें रसन चुआया एक जो बात अनूप बनी है पवन प्याला काजिया तीन पवन में एको जोगी कहो कौन है राजा ऐसे ज्ञान प्रगटिया पुरखोत्तम कहो कबीर रंग राता और दुनी सब परम पुलानी मन राम रसायन माता श्री राग बाणी भगत बेणी जियो की पहरियां कह कर गावना

छत उर्द त्यान लिव लागा निर्तक पिंड पद मद ना एनस एक अज्ञान सोनागा। ते दिन संभल कष्ट महादुख अब चित अधिक पसारया गर्भ छोड़ मृत मंडल आया तो नरहर मनो बिसारया। फिर पछतावेगा मूड़िया तू कवन कुमत परम लागा चेत राम नाही जमपुर जा।

विचरै अनरादा रहाओ। बाल विनोद चिंद रस लागा, खिन खिन मोह व्यापै, रस मिस मेद अमृत विख चाखी, तौ पंच प्रगट संतापै। जप तप संजम छोड़ सुकृत मत, राम नाम ना आराध्या, उछलिया काम काल मत लागी, तौ आन सकत गल बांधिया। तरुण तेज परत्रय मुख जो है, सर अपसर ना पछाणिया, उन मत काम महा बिख पूले, पाप पुन ना पछाणिया। सुत संपत देख इहो मन गर्भिया, राम हृदय पे खोया, अवर मर्त माया मन तोले, तौ पग मुख जन्म विगोया। पुंडर केस कुसुम ते तौले, सपत पताल की बाणी, लोचन समय

अवगत बाण छोड़ मृत मंडल तो पाछे पछताना। निकटी देह देख तुन उपजे मान करत नहीं बूझे, लालच करे जीवन पद कारण लोचन कछु न सूझे। थाका तेज उड़िया मन पंखी कर आंगन ना

अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा। जो पे हम ना पाप करंता, अहे अनंता, पतित पावन नाम कैसे हुंता। रहाओ तुम जो नायक आछो अंतर जामी, प्रभु ते जन जानी जय जनते स्वामी। शरीर अरादे मोको विचार देहु, रविदास समदल।

नाम में हर मन भाया, वडपागी हर नाम से आया, गुरपूरे हर नाम सिद्ध पाई, को विरला गुरमत चल जियो। मैं हर हर खर्च लिया बन पल्ले, मेरा प्राण सिखाई सदा नाल चल्ले, गुरपूरे हर नाम दृढ़ाया, हर नेचल हर तन पल्ले जियो। हर हर सज्जन मेरा प्रीतम राया, कोई आन मिलावे मेरे प्राण जीवाया, हौ रह ना सका बिन देखे प्रीतमा, मैं नीर वहे वह चले जियो। सतगुर मित्र मेरा बाल सखाई, हौ रह ना सका बिन देखे मेरी माई, हर जियो कृपा करो गुर मेलो, जन नानक हर तन पल्ले जियो। माज महला चौथा। मधुसूदन मेरे मन तन प्राणा, हौ हर बिन दूजा अवर ना जाना, कोई सज्जन संत मिले वडपागी, मैं हर का प्यारा दसै जियो। हौ मन तन खोजी पाल पलाई, क्यों प्यारा प्रीतम मिले मेरी माई, मिल सत संगत खोज दसाई, विच संगत हर प्रभु वसै जियो। मेरा प्यारा प्रीतम सतगुरु रखवाला, हम बालक दीन करो प्रतिपाला, मेरा मात पिता गुरु सतगुरु पूरा, गुर जल मिल कमल विकसै जियो। मैं बिन गुरु देखे नींद ना आवे, मेरे मन तन वेदन गुर बिरहो लगावे, हर हर दया करो गुर मेलो, जन नानक गुर मिल रह सह जियो। माज महला चौथा। हर गुण पढ़िए हर गुण गुणिए, हर हर नाम कथा नित सुनिए, मिल सत संगत हर गुण गाए, जग पौजल दुत्तर तरिए जियो। आओ सखी हर मेल करेहा, मेरे प्रीतम का मैं दे स्नेहा, मेरा मित्र सखा सो प्रीतम भाई, मैं दसे हर नर हरिए जियो। मेरी बेदन हर गुरु पूरा जाने, हौ रह ना सका बिन नाम वखाने, मैं औखद मंत्र दीजे गुरु पूरे, मैं हर हर नाम उधरिए जियो। हम चात्रिक दीन सतगुरु चरणाई, हर हर नाम बूंद मुख पाई, हर जल निद हम जल के मीने, जन नानक जल बिन मरिए जियो। माज महला चौथा। हर जन संत मिलो मेरे भाई, मेरा हर प्रभ दस्तो मैं भूख लगाई, मेरी श्रद्धा पूर जग जीवन दाते, मिल हर दर्शन मन पी जय जियो। मिल सत्संग बोली हर बाणी, हर हर कथा मेरे मन भाणी, हर हर अमृत हर मन पावे, मिल सतगुर अमृत पी जय जियो। वड पागी हर संगत पावे, पागीन प्रम चोटा खावे, बिन पागा सत्संग न लब्बे, बिन संगत मैल परी जय जियो। मैं आए मिलो जग जीवन प्यारे, हर हर नाम दया मन तारे, गुरमत नाम मीठा मन पाया, जन नानक नाम मन पी जय जियो। माज महला चौथा। हर गुर ज्ञान हर रस हर पाया, मन हर रंग राता हर रस पी आया, हर हर नाम मुख हर हर बोली, मन हर रस टुल टुल पौदा जियो। आवो संत मैं गल मेल आई है, मेरे प्रीतम की मैं कथा सुनाई है, हर के संत मिलो मन देवा, जो गुरबाणी मुख चौदा जियो। वड पागी हर संत मिलाया, गुरपूरे हर रस मुख पाया, पागहीन सतगुर नहीं पाया, मन मुख गर्व जूनी नित पौदा जियो। आप दयाल दया प्रवतारी, मल हो मैं बिखिया सब निवारी, नानक हट पट्टा।

मिल संगत मन नाम वसाई। हर प्रभ अगम अगोचर स्वामी, मिल सतगुर हर रस की चै जियो। तन तन हर जन जिन हर प्रभ जाता, जाए पूछा जन हर की बाता। पाप मलोवा मल मल तोवा, मिल हर जन हर रस की चै जियो। सतगुर दा तै नाम दिड़ाया, वड पागी गुर दर्शन पाया। अमृत रस सच अमृत बोली, गुरपुरे अमृत लीचे जियो। हर सत्संगत सत पुरख मिलाइए, मिल सत्संगत हर नाम ते आइए। नानक हर कथा सुनी

तिस के हो वारियां मिल सत्संगत लद्दा हर सज्जन हो सतगुरु विट्टो कुमाइया जियो जै जै देखा तै तै स्वामी तू कट कट रविया अंतर जामी गुरपुरे हर नाल दिखा लिया हो सतगुरु विट्टो सदवारिया जियो एको पवन माटी सब एका जोत सबाइया सब इका जोत वरतै पिन पिन ना रलई किसे धीर लाइया गुरप्रसादी इक नदरी आया हो सतगुरु विट्टो बताया जियो जन नानक बोले अमृत बाणी गुर सिखा कै मन प्यारी पाणी उपदेश करे गुर सतगुर पूरा गुर सतगुर पर उपकारिया जियो सत चौप दे महले चौथे के माज महला पंजवा चौक दे घर पहला मेरा मन लोचे गुर दर्शन ताई बिल करे चात्रिक की न्याई त्रिखा ना उतरे सांस ना आवे बिन दर्शन संत प्यारे जियो हौ कोली जियो कोल कुमाई गुर दर्शन संत प्यारे जियो रहाओ तेरा मुख सुहावा जियो सहज सुन बाणी चिर होआ देखे सारंग पानी तन सो देश जहां तू वसिया मेरे सज्जन मीत मुरारे जियो हौ कोली हौ कोल कुमाई गुर सज्जन मीत मुरारे जियो रहाओ एक करी ना मिलते ता कल युग होता हुन कद मिली है प्रिय तुद भगवंता मोहे रहन ना विहावे नींद ना आवे बिन देखे गुर दरबारे जियो हौ कोली जियो कोल कुमाई तिस सच्चे गुर दरबारे जियो रहाओ पाग हुआ गुर संत मिलाया प्रभ अविनाशी कर में पाया सेव करी पल चसा ना बिछड़ा जन नानक दास तुम्हारे जियो हौ कोली जियो कोल कुमाई जन नानक दास तुम्हारे जियो रहाओ राग माज महला पंजवा सारुत सुहावी जित तुद समाली

साहिब बापा मारा नौ निद तेरे अखुट पंडारा जिस तू दे सो त्रिपत अघावे सोई भगत तुम्हारा जियो सबको आसे तेरी बैठा कट कट अंतर तू है उठा सबे सांझी वाल सदाइन तू किसे न दिसे बहारा जियो तू आपे गुरमुख मुक्त कराए तू आपे मनमुख जन्म पवाए नानक दास तेरे बलिहार है सब तेरा खेल दसारा जियो माज महला पंजवा अनहद वाजे सहज सुहेला शब्द आनंद करे सद केला सहज गुफा में तारी लाई आसन ऊंच सवारिया जियो फिर अपने गृह में आया जो लोड़ींदा सोई पाया तृप्त अदाए रहा है संतो गुर अनुभव पुरख दिखा रहा जियो आपे राजन आपे लोगा आप निर्वाणी आपे पोगा आपे तख्त बै सच न्याई सब चूकी कूक पुकारिया जियो जेहा डिठा मैं ते हो कहया तिस रस आया जिन पेद लया ज्योति ज्योत मिली सुख पाया जन नानक इक पसारिया जियो माज महला पंजवा जित कर तिर सुहाग बनाया तित कर सखिए मंगल गाया आनंद विनोद तित कर सोहे जो तन कंत सिगारी जियो सा गुणवंती सावड पागण पुत्रवंती सीलवंत सुहागण रूपवंत सा सुगड़ विचखण जो तन कंत प्यारी जियो अचारवंत साई प्रधाने सब सिंगार बने तिस ज्ञाने सा कुलवंती सा सब राई जो फिर कह रंग सवारी जियो महिमा तिसकी कह न जाए जो फिर मेल लई अंग लाए फिर सुहाग वर अगम गोचर जन नानक प्रेम सधारी जियो माज महला पंजवा खोजत खोजत दर्शन चाहे पांत पांत बन बन अवगाहे निर्गुण सरगुण हर हर मेरा कोई है जियो आन मिलावे जियो खट सासत विचरत मुख ज्ञाना पूजा तिलक तीरथ स्नाना निवली कर्म आसन चौरासी इनमें सांत ना आवे जियो अनक बरख किए जप तापा गवन किया धरती परमाता एक खिन हृदय शांत ना आवे जोगी बहुड़ बहुड़ उठतावे जियो कर कृपा मोह साध मिलाया मन तन शीतल तीरज पाया प्रभ अविनाशी बसिया कट पीतर हर मंगल नानक गावे जियो माज महला पंजवा पार ब्रह्म अपरंपर देवा अगम अगोचर अलख अपेवा दीन दयाल गोपाल गोविंदा हर त्यावो गुरमुख गाती जियो गुरमुख मधुसूदन निस्तारे गुरमुख संगी कृष्ण मुरारे दयाल दमोदर गुरमुख पाये होरत कित न पाती जियो निरहारी केशव निर्वैरा कोट जना जाके पूजे पैरा गुरमुख हृदय जाके हर हर सोई भगत एकाती जियो अमोघ दर्शन बेअंत अपारा वड समरथ सदा दा तारा गुरमुख नाम जपिए तित तरिए गत नानक विरली जाती जियो माज महला पंजवा कहया करना दिता लेना गरीबा अनाथा तेरा माना सब किछ तू है मेरे प्यारे तेरी कुदरत को बल जाई जियो पाने उजड़ पाने राहा पाने हर गुण गुरमुख गावाहा पाने परम पवे बहु जूनी सब किछ तिसे रजाई जियो ना को मूरख ना को स्याणा वर्ते सब किछ तेरा पाना अगम अगोचर बेअंत अथाह तेरी कीमत कह न जाई जियो खास संतन की देहो प्यारे आए पया हर तेरे द्वारे दर्शन पेखत मन आघावे नानक मिलन सुभाई जियो
माज महला पंजवा दुख तदे जा विसर जावे उख व्यापे बहुविध तावे सिमरत नाम सदा सुहेला जिस देवे दीन दयाला जियो सतगुर मेरा वड समरथा जी संभाली ता सब दुख लथा चिंता रोग गई हौ पीड़ा आप करे प्रतपाला जियो बारक वांगी।

सतगुरु पूरे जिन बंधन काटे सगले मेरे हृदय नाम दे निर्मल किए नानक रंग रसाला जियो माज महला पंजवा लाल गोपाल दयाल रंगीले गैर गंभीर बेअंत गोविंदे ऊंच अथा बेअंत स्वामी सिमर सिमर हो जीवा जियो दुख पंजन निदान अमोले

सतगुरु मिलिया सफल दर्शन नेत्र पेखत तरिया तन मूरत चसे पल कड़िया तन सो ओए संजोगा जियो उद्दम करत मन निर्मल होआ हर मार्ग चलत परम सगला कोया नाम निधान सतगुरु सुनाया मिट गए सगले रोगा जियो अंतर बाहर तेरी बाणी तुद आप कथी ते आप वखाणी गुर कहया सब एको एको अवर ना कोई होएगा जियो अमृत रस हर गुर ते पिया हर पैनन नाम भोजन किया नाम रंग नाम चोज तमाशे नाउ नानक कीने भोगा जियो माज महला पंजवा सगल संतन पै वस इक मांगो करो बिनंती मान त्यागो वार वार जाई लख वरिया देहो संतन की तू राजियो तुम दाते तुम पुरख विदाते तुम समरथ सदा सुख दाते सबको तुम ही तेवर सावे अवसर करो हमारा पूरा जियो दर्शन तेरे पवन पुनीता आत्मगढ़ बिखम तिना ही जीता तुम दाते तुम पुरख विदाते तुद जेवड़ अवरना सूरा जियो रेन संतन की मेरे मुख लागी दुर्मत बिनसी कुबुद्ध अपागी सच कर बैस रहे गुण गाए नानक बिनसे पूरा जियो माज महला पंजवा विसरना ही एवर दाते कर कृपा भगतन संग राते दिन सुरैन ज्यों तुद त्याई एहो दान मोहे करना जियो माटी अंधी सुरख समाई सब किस दिया पलिया जाई अनद विनोद चोज तमाशे तुद पावे सो होना जियो जिस दा दिता सब किस लेना छत्ती अमृत भोजन खाना सेज सुखाली शीतल पवना सहज केल रंग करना जियो सा बुद्ध दीजै जित विसरे नाही सा मत दीजै जित तुद त्याई सास सास तेरे गुण गावा ओट नानक गुरचरणा जियो माज महला पंजवा सिफत सलाहन तेरा हुकम रजाई सो ज्ञान ध्यान जो तुद पाई सोई जप जो प्रभ जियो पावे पाणे पूर ज्ञाना जियो अमृत नाम तेरा सोई गावे जो साहिब तेरे मन पावे तू संतन का संत तुम्हारे संत साहिब मन माना जियो तू संतन की करे प्रतपाला संत खेले तुम संग गोपाला अपने संत तुद खरे प्यारे तू संतन के प्राणा जियो उन संतन के मेरा मन कुर्बाने जिन तू जाता जो तुद मन पाने तिनके संग सदा सुख पाया हर रस नानक तृप्त अघाना जियो माज महला पंजवा तू जल निद हम मीन तुम्हारे तेरा नाम बूंद हम चात्रिक तिखारे तुमरी आस प्यासा तुमरी तुम ही संग मन लीना जियो ज्यो बारिक पी खीर अगावे ज्यो निर्धन तन देख सुख पावे त्रिखावंत जल पीवत ठंडा त्यों हर संग इहो मन पीना जियो ज्यो अंधियारे दीपक परगासा परता चितवत पूरन आसा मिल प्रीतम ज्यो होत आनंदा त्यों हर रंग मन रंगीना जियो संतन मोको हर मार्ग पाया साध कृपाल हर संग गिजाया हर हमरा हम हर के दासे नानक शब्द गुरु सच दीना जियो माज महला पंजवा अमृत नाम सदा निर्मलिया सुखदाई दुख बिडारन हरिया अवर साध चक सगले देखे मन हर रस सबते मीठा जियो जो जो पीवे सो तृप्तावे अमर होवे जो नाम रस पावे नाम निधान तिसे प्राप्त जिस शब्द गुरु मन उठा जियो जिन हर रस पाया सो तृप्त अघाना जिन हर साध पाया सो नाए दुलाना तिसे प्राप्त हर हर नामा जिस मस्तक पागी था जियो
हर एक हाथ आया वरसाने बहु तेरे तिस लग मुकत पाए कनेरे नाम निधाना गुरुमुख पाईए कहो नानक विरली दीठा जियो माज महला पंजवा निध सिद्ध रिद हर हर हर मेरे जन्म पदार्थ गैर गंभीर है लाख कोट खुशियां रंग रावे जो गुर लागा पाई जियो दर्शन पेखत पै पुनीता सगल उधारे पाई मीता अगम अगोचर स्वामी अपना गुर कृपा से सच त्याई जियो जा को खोजे सर्व उपाय वड पागी दर्शन को विरला पाए ऊंच अपार अगोचर थाना ओ महल गुरु देखाई जियो गैर गंभीर अमृत नाम तेरा मुक्त पया जिस हृदय वसेरा गुर बंधन तिनके सगले काटे जन नानक सहज समाई जियो माज महला पंजवा प्रभु कृपा से हर हर त्यावो प्रभु दया से मंगल गावो उठक बैठक सोवत जागत हर त्याय सगल अवरदा जियो नाम औखद मोको साधु दिया किलबिक काटे निर्मल छिया आनंद पया निक्षी सब पीरा सगल बिना से दर्दा जियो जिसका अंग करे मेरा प्यारा सो मुक्ता सागर संसारा सत करे जिन गुरु पछाता सो काहे को डरदा जियो जब ते साधु संगत पाए गुर पेट तो हों गई बलाए सास सास हर गावे नानक सतगुरु ताक लिया मेरा पर्दा जियो माज महला पंजवा ओत पोत सेवक संग राता कप्रत पाले सेवक सुखदाता पानी पखा पीसो सेवक कै ठाकुर ही का आहार जियो काट तिलक प्रभ सेवा लाया हुकम साहिब का सेवक मन पाया सोई कमावे जो साहिब पावे सेवक अंतर बाहर माहर जियो तू दाना ठाकुर सब विद जाने ठाकुर के सेवक हर रंग माने जो किछ ठाकुर का सो सेवक का सेवक ठाकुर ही संग जाहर जियो अपने ठाकुर जो पहराया बहुर न लेखा पुछ बुलाया तिस सेवक के नानक कुर्बानी सो गहर गंभीरा गहर जियो माज महला पंजवा सब किछ कर में बाहर नाही बाहर टोले सो परम पुलाही गुर प्रसादी जिन अंतर पाया सो अंतर बार सोहेला जियो चिम चिम वर्षे अमृत धारा मन पीवे सुन शब्द विचारा अनद विनोद करे दिन राती सदा सदा हर के लाजियो जन्म जन्म का बिछड़िया मिलिया साध कृपा से सूखा हरिया सुमत पाए नाम से आए गुरमुख होए मेला जियो जल तरंग ज्यो जले समाया त्यों ज्योति संग ज्योत मिलाया कहो नानक प्रम कटे किवाड़ा बहुर न होई है जौला जियो माज महला पंजवा तिस कुर्बानी जिन तू सुनिया तिस बलिहारी जिन रसना पणिया वार वार जाई तिस वितों जो मन तन तुद आरा दे जियो तिस चरण पखाली जो तेरे मार्ग चाले नैन निहाली तिस पुरख दयाले मन देवा तिस अपने साजन जिन गुर मिल सो प्रबला दे जियो सेवड पागी जिन तुम जाने सबके मदे अलिपत निर्बाणे साध के संग उन पौजल तरिया सगल दूत उन सा दे जियो तिनकी शरण परया मन मेरा मान पान तज मोह अंधेरा नाम दान दीजे नानक को तिस प्रभ अगम अगा दे जियो माज महला पंजवा तू पेड़ साफ तेरी फूली तू सूखम हुआ अस्थूली तू जल निद तू फेन बुदबुदा तुद बिन अवर न पाली है जियो तू सूत मणिये भी तू है तू गंठी मेर सिर तू है आद मद अंत प्रभ सोई अवर न कोई दिखाली है जियो तू निर्गुण सर्गुण सुखदाता तू निर्माण रसिया रंग राता
अपने का सब आपे जान है, आपे तुद संभाली है जियो। तू ठाकुर सेवक फुन आपे, तू गुपत प्रगट प्रभ आपे। नानक दास सदा गुण गावे, एक पोरी नदर निहाली है जियो। माज महला पंजवा, सफल सुबाणी जित नाम वखाणी। गुर प्रसाद किने विरले जानी, तन सोवेला जित हर गावत सुनना। आए ते परवाना जियो, से नेत्र प्रवान जिनी दर्शन पेखा। से कर पले जिनी हर जस लेखा, से चरण सुहावे जो हर मार्ग चले। हौं बल तिन संग पछाणा जियो, सुन साजन मेरे मीत प्यारे। साध संग खिन माए उदारे, किलविक काज हुआ मन निर्मल। मिट गए आवन जाना जियो, दो कर जोड़ एक बिनो करी जय। कर कृपा दुबदा पत्थर लीजे, नानक कहो प्रभ भय कृपाला। प्रभ नानक मन पाना जियो, माज महला पंजवा। अमृत बाणी हर हर तेरी, सुन सुन होवे परम गत मेरी। जलन बुझी शीतल होए मनुआ, सतगुर का दर्शन पाए जियो। सुख पया दुख दूर पराना, संत रसन हर ना।

मेहरवान किरपाल दयाला सगले तृप्त अघाए जियो। वन त्रिण त्रिभवन की तुन हरिया करण हार खिन पीतर करिया गुरमुख नानक तिसै अरादे मन की आस पुजाए जियो। माज महला पंजवा तू मेरा पिता तू है मेरा माता तू मेरा बंधक तू मेरा प्राता तू मेरा राखा सबनी थाई ताबो के आकारा जियो। तुमरी कृपा से तुद पछाणा।

सब तुद उपाए, जित जित पाना तित तित लाए, सब किछ कीता तेरा होवै, नाही किछ असाड़ा जियो, नाम ते आए महा सुख पाया, हर गुण गाए मेरा मन सीत लाया, गुर पूरे वजी वधाई, नानक जिता विखाड़ा जियो। माज महला पंजवा, जी प्राण प्रभ मने अदारा, भगत जीवे गुण गाए अपारा, गुण निधान अमृत हर नामा, हर त्याय त्याय सुख पाया जियो। मनसा तार जो करते आवे, साध संग जन्म मरण मिटावे, आस मनोरथ पूरे होवे, पेटत गुरदरसाया जियो। अगम अगोचर किछ मित नहीं जानी, साधिक सिद्ध त्यावे ज्ञानी, खुदी मिटी चूका को लावा, गुर मन ही मैं प्रगटाया जियो। आनंद मंगल कल्याण निधाना, सुख सहज हर नाम वखाना, होए कृपाल स्व

तू प्रीतम ठाकुर अत पारी, तुमरे कर्तव्य तुम ही जानो, तुमरी ओट गोपाला जियो। गुण गावत मन हरिया होवे, कथा सुनत मल सगली खोवे, पेटत संग साध संतन कह, सदा जपो दयाला जियो। प्रभ अपना साथ साथ समारो, ए मत गुर प्रसाद मन पारो, तुमरी कृपा ते होए परगासा, सर्व मया प्रतपाला जियो। सत सत सत प्रभ सोई, सदा सदा सद आपे होई, चलत तुम्हारे प्रगट प्यारे, देख नानक पय निहाला जियो। माज महला पंजवा, हुक्मी वर्षण लागे मेहा, साजन संत मिल नाम जपेहा, शीतल सांत सहज सुख पाया, ठांड पाई प्रभ आपे जियो। सब किछ बहुतो बहुत उपाया, कर कृपा प्रभ।

गुर प्रसाद तिस सदा ति आई, जन्म मरण पै काटे मोहा, बिनसे सोग संतापे जियो। सास सास नानक साला है, सिमरत नाम काटे सब पाहे, पूरन आस तरी खिन पीतर, हर हर हर गुण जापे जियो। माज महला पंजवा, आओ साजन संत मीत प्यारे, मिल गावे गुण अगम अपारे, गावत सुनत सबे ही मुक्ते, सो त्याय जिन हम किए जियो। जन्म जन्म के किल विख जावे, मन चिंदे से ही फल पावे, सिमर साहिब सो सच स्वामी, रिजक सबस को दिए जियो। नाम जपत सर्व सुख पाये, सब पौ बिन से हर हर त्याये, जिन से व्यासो पार ग्रामी, कारज सगले थिए जियो। आए पया तेरी शरणाई, ज्यों पावे त्यों लह मिलाई, कर कृपा प्रपक्ति लावो, सच नानक अमृत पिए जियो। माज महला पंजवा, पय कृपाल गोविंद गोसाई, मेघ

जो बार माता संहारे दुख पंजन सुख सागर स्वामी देत सगल आहारे जियो जल थल पूर रहा मेरवाना सद बलिहार जाइए कुर्बाना रैन दिन स्थित सदा ते आई जे खिन में सगल उधारे जियो राख लिए सगले प्रभ आपे उतर गए सब शोक संतापे नाम जपत मन तन हरियावल प्रभ नानक नदर निहारे जियो माज

सेई नगर उजाड़ी जियो। हर रुखी रोटी खाए समाले, हर अंतर बाहर नगर निहाले, खाए खाए करे बद फैली, जान विसु की वाड़ी जियो। संता से की रंग न लाए, साकत संग विक्रम कमाए, दुलब दे कोई अज्ञानी, जड़ अपनी आप उपाड़ी जियो। तेरी शरण मेरे दीन दयाला, सुख सागर मेरे गुरु गोपाला, कर कृपा नानक गुण गावे, राखो शर्म असाड़ी जियो। माज महला पंजवा। चरण ठाकुर के हृदय समाने, कल कलेश सब दूर पयाने, सांस सुख सहज धुन उपजी, साधु संग निवासा जियो। लागी प्रीत ना टूटे मूले, हर अंतर बार गया पर पूरे, सिमर सिमर सिमर गुण गावा, काटी जम की फाता जियो। अमृत वर्ष है अनहद बाणी, मन तन अंतर सांस समाणी, त्रिपत अघाए रहे जन तेरे, सतगुर किया दिलासा जियो। जिसका साथ तिसते फल पाया, कर कृपा प्रभ संग मिलाया, आवन जान रहे वड पागी, नानक पूरन आसा जियो। माज महला पंजवा। मियो पया परमेश्वर पाया, जी जंत सब सुखी वसाया, दया कलेस पया सुख साचा, हर हर नाम समाली जियो। जिसके से तिन ही प्रतपारे, पार ब्रह्म प्रपैर खवारे, सुनी बिनंती ठाकुर मेरे, पूरन होई काली जियो। सर्व जिया को देवन हारा, गुर प्रसादी नदर निहारा, जल थल मैयल सब तृप्ताने, साधु चरण पखाली जियो। मन की इच्छे पुजावन हारा, सदा सदा जाई बलिहारा, नानक दान किया दुख पंजन, रते रंग रसाली जियो। माज महला पंजवा। मन तन तेरा, तन भी तेरा, तू ठाकुर स्वामी प्रभ मेरा, जियो पिंड सब रास तुम्हारी, तेरा जोर गोपाला जियो। सदा सदा तू है सुखदाई, निव निव लागा तेरी पाई, कार कमावा जे तुद पावा, जा तू दे दयाला जियो। प्रभ तुम ते लेना, तू मेरा गहना, जो तू दे सोई सुख सहना, जिथे रखे बेकुंठ स्थाई, तू सबना के प्रतपाला जियो। सिमर सिमर नानक सुख पाया, आठ पहर तेरे गुण गाया, सगल मनोरथ पूरन होए, कदे ना होए दुखाला जियो।

तेरे सगुण तेरे सगुण तेरे सगुण तेरे चंदन तेरा चंदन तेरा चंदन तेरा चंदन तेरा चंदन तेरा चंदन तेरा।

बनिए वर्षा वासु दर्शन तेरे वासु दर्शन तेरे वासु दर्शन तेरे वासु बनिए वर्षा वासु दर्शन तेरे वासु बनिए वर्षा वासु।

0: दर्शन तेरे सुन प्रभु रे
1: वाहे
0: निमख दृष्ट तेरे
1: वाहे
0: निमख दृष्ट तेरे
1: वाहे
0: निमख दृष्ट तेरे
1: वाहे
0: निमख दृष्ट तेरे
1: वाहे
0: शुक्र हरे लिए जन्मा अमृत दृष्ट संत देवाय अमृत दृष्ट संत देवाय निमख दृष्ट तेरे निमख दृष्ट तेरे निमख दृष्ट तेरे अमृत दृष्ट शुभ कर अमृत शुभ कर हर अगपाप सकल वाला निमख दृष्ट तेरे निमख दृष्ट तेरे अमृत दृष्ट निमख प्रभु अमृत दृष्ट निमख प्रभु सर्व रंग रस माना सर्व रंग रस माना अमृत दृष्ट निमख प्रभु अमृत दृष्ट निमख प्रभु सर्व रंग रस माना निमख दृष्ट तेज जीवा निमख दृष्ट तेज जीवा कृपा कटा लोकन दीनो दास का दुख बिदारे निमख दृष्ट तेज जीवा निमख दृष्ट तेज जीवा अमृत नाम सुन जय तेरा अमृत नाम सुन जय तेरा कृपा कर कृपा कर कृपा कर कृपा कर

हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत शाड़ बिख बिखकारी, माया मोह परम पै फूले, सुतदारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुने गुरु संगत, तेहि मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास

अहन सुसहज सुपाय दर्शन परसय गुरु जन्म मरण दुख जाए होगा शब्द कसामी मूर अरसों पुरसों चटी उद जिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म भी कटी है सज्जन सचा पातशाह सिर शाह जिस पास बैठिया सूही है सबना दा वेसाह सतनाम वाहिगुरु साहिब जी तनाश्री महला पंजवा जा को हर रंग लागो इस युग में है सो कही अत है सूरा आत्म जिणै सगल वसदांक जाका सतगुर पूरा जाको हर रंग लागो इस युग में सो कही अत है सूरा आत्म जिणै सगल वसता कै जाका

सरणि पावन नाम त्यावन सहज समावन संग रहा जन के चरण वसै मिरहि अरै संग पुनीता देही जन की तूर देह कृपा निद नानक कै सुखेही जन के चरण वसह मिरहि अरै संग पुनीता देही जन की तूर देह कृपा निद नानक कै सुखेही। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। जप जी साहिब एक ओंकार। सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सह पं गुरप्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है पी सच नानक हो सी पी सच सोचै सोच न हो गई इंज सोच अखबार चुपै चुप न हो गई इंज लाए रहा ने उतार भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुनिया पार सह सण पाला कहो है गायक न चल नाल किब सुचारा हुई है किब कूड़ है टुटै पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहया जाई हुक्मी होवन जी हुक्म मिलै बड़ियाई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है एक न हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा पवाई है हुक्म अंदर सब को बाहर हुक्म न कोए नानक हुक्म जे बुझै ता हुमै कह न कोए गावै को दान होवै किस तान गावै को दात जाणै निशान गावै को गुण बड़ियाइयां चार गावै को विद्या विखम विचार

दूर कथना कथी नव तोट गत गत कथी गोटी गोट कोट देंदा देलन दे थक पाए जुगा जुगंतर खाही खाए हुक्मी हुक्म चलाए राह नानक विकस विप्रवाह साचा साहिब साच नाई पाख्या पाओ अपार आख है मंगह देह देह दात करे दातार फिर के अगर रखिए जग दिस दरबार मोहों के बोलन बोली है जित सुन करे प्यार अमृत वेला सच नाऊ वड़ियाई विचार करमी आवे कपड़ा नदरी मोह द्वार नानक एव जानिए सब आपे सचार थाप्या न जाए गीता न होए आपे आपु निरंजन सोए जिन सेव्या तिन पाया मान नानक गावीए गुणी निधान गावीए सुनिए मन रखिए पाऊ दुख पर हर सो कर लै जाए गुरमुख नादम गुरमुख वेदम गुरमुख रह आसुमाई गुर ईश्वर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई जे हों जाना आखा नाही कहना कथन ना जाई गुरा एक देह बुझाई सब ना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाई तीर्थ नावा जे तिस पावा आवण पाणे के नाहे करी जे तीसर ठो पाई वेखा आवण करमा के मिलै लई मत बिजरत निवाहर माणिक जे एक गुर की सिख सुणी गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई जे जुग चारे आर जा होर दसोनी होए नवा खंडा विच जानिया नाल चले सब कोए चंगा ना उर खाए कहे जस कीरत जग ले

बचाए। खड़ग केत मैं शरण तिहारी, आप हाथ दल उबारी, सर्व धर्म होसाई, दुष्ट दोग दिल बचाई। सतनाम श्री वाहिगुरु जी राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। आनंद पाया मेरी माई सतगुरु मैं पाया, सतगुरु तां पाया सहज सेती, मन बजियां बधाइयां, राग रतन परवार परियां, शब्द गा बनाइयां।

मेरे दुख सब कारण अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सवारना सबना गल्ला समरस स्वामी सो क्यों मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले।

नानक सतगुरु वाजो और कच्ची बाणी। गुर का शब्द रतन है, हीरे जत जड़ाऊ, शब्द रतन जत मन लागा, हे हुआ समाऊ, शब्द से दी मन मिलया, सच लाया पाऊ। आपे हीरा रतन आपे जसनों दे बजाए, कहे नानक शब्द रतन है, हीरा जत जड़ाऊ। शिव शक्त आप पाए, कह करता पे गुमरदाए, गुमरदाए आप देखाए। गुरमुख सब जाए, तोड़े बंधन होगा मुक्त मां शब्द मन बसाई। गुरमुख गुरमुख जिसन आप करे सो होगा, एक स्थले बुलाए। कहे नानक आप करता पे हुकुम बजाए। सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे, तत्सार न जानी गुरु वाजो, तत्सार न जानी ते ही गुणी संसार ब्रह्म सुता सत्या रहन बयानी। गुर कृपा देसे जन जाके, जिन्ना हर मन बसया भूले अमृत बाणी। कहे नानक सो तत पाए, जिसन मन दिन हर लिब लागे जागत रहन बयानी। माता के उदर मैं प्रतपाल करे, सो क्यों मनो विसारी है, मनो क्यों विसारी है बुढ़दाता। जे अगन मह आहार पहुंचावे, उसनों कह पौ न सके, जिसनों अपनी लिव लावे। अपनी लिव आपे लाए, गुरमुख सदा संभाली है। कहे नानक बड़दाता, सो क्यों मनो विसारी है। जैसी अग्न उदर मह, तैसी बार माया, माया गन सवे को जही करते गे रजाया। जहां तिस पाण जमया, परवार भला पाया, परवार भला पाया। लिब छुड़के लगी दृष्णा, माया अमर बरताया। हे माया जितार विसरै, मोह पजै पाओ दूजा लाया। कहे नानक गुर प्रसादी, जिन्हां लिब लागी तिन्नी विचे माया पाया। हर आप मुल कहै, मुल न पाया जाए, मुल न पाया जाए, किसै बिटोरै लोक बिल लाए। ऐसा सतगुरु जी मिलाए, तिसनों सिर सौंपिया विचों आप जाए। जिसदा जियो तिस मिल रहे, हर बसै मन आए। हर आप मुलक है, पाग दिन के नानक जिन हर पल्ले पाए। हर रास मेरी मन बन जा रहा सतगुर दे रास जानी। हर हर नित जप्यो जियो लाह घट्यो दिहाड़ी, ए धन तिना मिला जन पिपाणा। कहे नानक हर रास मेरी मन हुआ बनजारा। ए रसना तू अन रस राज रही, तेरी प्यास न जाए और कहते जिधर हर रस भले न पाए। हर रस पाए भले पीए, हर रस बहुना तृष्णा लग आए। यह हर रस करमी पाई है, सतगुर मिले जिस आए। कहे नानक होर अन रस विसरे, चार विसै मन आए। हे श्री राम मेरे यार, तुम मैं जोत रखी, दादी जग मैं आया। जिन हर तेरा रचन रचा, सो हर मन ना बसाया। गुर प्रसादी हर मन वसया, पूर्व लिखया पाया। कह नानक श्री प्रवान हुआ, जिन सतगुर से जत लाया।

सुनते पुनीत कहते पवत सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

कार कृपा पार ब्रह्म स्वामी एहे बंधन छुटकारी बूढ़त अंध नानक प्रभ काढ़त साध जना संगारी सतनाम वाहिगुरु साहिब जी तन आसरी महला पंजवा जाको हर रंग लागो इस युग में सो कही अत है सूरा आत्म जनै सगल वसदा कै जाका सदगुर पूरा जाको हर रंग लागो इस युग में सो कहियत है सुरा आत्म जनै सगल वसदा कै जाका सतगुर पूरा

जन के चरण वसै मिरहि अरै संग पुनीता देहि। जन की तूर देहो कृपा निद नानक कै सुख ही। वाहिगुरु जी का खालसा,

अनहार स्वामी सगल कटा के अंतर जामी अपने गात में ते जानह आपे आपन संग आपे प्रभराते तुमरी ओसते तुमते होए नानक अवर ना जान सकोए। सर्व धर्म मह श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जाप निर्मल कर्म सगल क्रिया मह उत्तम क्रिया साध संग दुर्मत मल हिरिया सगल उद्यम मह उद्यम भला हर का नाम जपहो जी सदा सगल बानी मह अमृत बानी हर को जास सोने रसन बखानी।

मारगोपाव कारु गहलिहो ओढ़ निभाव कहाँ बुझारते बुझै डोरा निस कहिया ता समझै पोहरा कहाँ बिसन पाद गावै गोंग जतन करै ताओ पी सुर पहंग कह पिंगल पर्वत पर पवन नहीं होत उहां उस गमन करतार करुणामय दीन बेनती करै नानक तुमरी कृपा तरै संग सहाई सो आवै ना चीते जो बैराई तासो प्रीत बलुआ के गृह।

प्रभ सो प्रसन्न बस मनसोए प्रभ दया ते मत ऊतम होए सर्व निधान प्रभ तेरी माया आपह कछु न किन्हु लाया जित जित लावह तित लगह हरनाथ नानक इनकै कछु ना हाथ सलोक।

पूरे। सार की शोभा का नाही अंत, सार की शोभा सदा बेअंत, सार की शोभा ऊंचते ऊंची, सार की शोभा मूचते मूची, सार की शोभा साध बने आई, नानक साध प्रभ पे।

का गरीबी समाहा, ब्रह्मज्ञानी पर उपकार उमाहा। ब्रह्मज्ञानी का नाही तंधा, ब्रह्मज्ञानी ले तहवत बंधा। ब्रह्मज्ञानी का होए सो पला, ब्रह्मज्ञानी सुफल फला। ब्रह्मज्ञानी सांग सगल उधार, नानक ब्रह्मज्ञानी जपय सगल संसार। ब्रह्मज्ञानी का एकाय रंग, ब्रह्मज्ञानी का बसय प्रभ संग। ब्रह्मज्ञानी का नाम आधार, ब्रह्मज्ञानी का नाम परवार। ब्रह्मज्ञानी सदा सर जागत, ब्रह्मज्ञानी हम बुद्ध त्यागत। ब्रह्मज्ञानी का मान परमानंद, ब्रह्मज्ञानी का कहर सदा आनंद। ब्रह्मज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्मज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म का वेता, ब्रह्मज्ञानी एक संग हेता। ब्रह्मज्ञानी का होए अचिंत, ब्रह्मज्ञानी का निर्मल मंत। ब्रह्मज्ञानी जस करे प्रभ आप, ब्रह्मज्ञानी का बड़ प्रताप। ब्रह्मज्ञानी का दर्स बड़भागी पाइय, ब्रह्मज्ञानी का बाले बाल जाइय। ब्रह्मज्ञानी का खोज महेश्वर, नानक ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्मज्ञानी की कीमत नाहे, ब्रह्मज्ञानी का सकल मन माहे। ब्रह्मज्ञानी का कौन जान भेद, ब्रह्मज्ञानी का सदा आदेश। ब्रह्मज्ञानी का कथिया न जाए अदाक्षर, ब्रह्मज्ञानी सर्व का ठाकुर। ब्रह्मज्ञानी के मेत कौन बखान, ब्रह्मज्ञानी की गाते ब्रह्मज्ञानी जान। ब्रह्मज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्मज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्मज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता, ब्रह्मज्ञानी सर जीव नहीं मरता। ब्रह्मज्ञानी मुक्त जुगत जीव का दाता, ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता। ब्रह्मज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्मज्ञानी का सब परिहाथ। ब्रह्मज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्मज्ञानी आप निरंकार। ब्रह्मज्ञानी की शोभा ब्रह्मज्ञानी बनी, नानक ब्रह्मज्ञानी सर्व का तनी श्लोक। पुरत हर जो अंतर नाम, सर्व में पेख भगवान। निमख निमख ठाकुर नमस्कार, नानक हो अपरस सगल निस्तार। अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस, मन मह प्रीत निरंजन दर्श। पर त्रय रूप ना पेख नेत्र, साध की टहल संत संग हेत। कर्ण ना सुने काहू की निंदा, सब ते जाने आपस को मंदा। गुर प्रसाद विख्या पर हर, मन की बासना मन ते टर। इंद्री जेत पंच दोख ते रहत, नानक कोट मध्य को ऐसा अपरस। वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न, विष्णु की माया ते हो भिन्न। कर्म करत हो निह कर्म, तिस वैष्णो का निर्मल धर्म। काहू फल की इच्छा नहीं बाच, केवल भगत कीर्तन संग राच। मंत्र अंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर होवत कृपाल। आप दृढ़ अवरह नाम जपावे, नानक हो वैष्णो परम गत पावे। भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्याग दुष्ट का संग। मन ते बिनस सगला परम, कर पूजा सगल पार ब्रह्म। साध संग पापा मल खोवै, तिस भगवती की मत उत्तम होवै। भगवंत की टहल करे नित नीत, मन तन अर्प विष्णु प्रीत। हर के चरण हृदय बसावै, नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै। सो पंडित जो मन प्रबुद्ध है, राम नाम आत्म में शोध। राम नाम सार रस पीवै, उस पंडित के उपदेश जग जीवै। हर की कथा हृदय

अस दरगह परवान अपने दास को आप कृपा करे, तिस दास को सब सोजी परे। सगल संग आत्म उदास, ऐसी जुगते नानक रामदास। प्रभु की आज्ञा आत्म हितावे, जीवन मुक्त सौ कहावे। तैसा हरख तैसा उस सोग, सदा आनंद तह नहीं वियोग। तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिख खाटी। तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंक तैसा राजान। जो वरताए साई जुगते, नानक हो पुरख कहिया जीवन मुक्ते। पार ब्रह्म के सगले ठाओ, जत जत कर राख तैसा तिन नाओ। आपे करन करामन जोग, प्रभ पहवे सोई फुन होग। पसर्यो आप हुए अंत तरंग, लखे ना जाहे पार।

पर नानक रचना प्रभ रचि बहु विध अनेक प्रकार अष्टपदी। कई कोटे हुए पुजारी, कई कोटे आचार व्यवहारी, कई कोटे पह तीर्थवासी, कई कोटे बन प्रमह उदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपिस्वर होते, कई कोट आत्म ध्यान तार है, कई कोट कब काब विचार है, कई कोट नवतन नाम त्याव है, नानक करते का अंत ना पावहे। कई कोट पहे अभिमानी, कई कोट अंध अज्ञानी, कई कोट कृपन कठोर, कई कोट अपिग आत्म निकोर, कई कोट पर दर्भ को हिर है, कई कोट पर दुख ना करहे।

पंखी सर्प उपाए, कई कोट पाथर बिरख निप जाए। कई कोट पवन पानी बैस अंतर, कई कोट देश भूमंडल, कई कोट शशियर सूर नक्षत्र, कई कोट देव दानव इंद्र सिर शतर। सगल समग्री अपने सूत तहरै, नानक जिस जिस भावै तिस तिस निस्तारै। कई कोट राजस तामस सातक, कई कोट वेद पुराण सिमृत अर्थास्त। कई कोट किए रत्न समुंद, कई कोट नाना प्रकार जंत। कई कोट किए चर जीवे, कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे। कई कोट जख किंद्र पिसाच, कई कोट भूत प्रेत सूकर मृगाच। सब ते नेरा सब भूते दूरे, नानक आप अलिप्त रहया पहर पूरे। कई कोट पाताल के वासी, कई कोट

सच करणी सचता की रहत, सच हृदय सत मुख कहत, साची दृष्टि साचा आकार, सच वर्तै साचा पासार, पार ब्रह्म जिन सच कर जाता, नानक सोजन सच समाता। सलोक रूप ना रेख ना रंग केश, त्रिहु गुण ते प्रभ पिहन, तिसह बुझाए नानक।

अपेदाना गहर गंभीर गहीर सुजाना। पार ब्रह्म परमेश्वर गोबिंद कृपा निधान दयाल बख्शंद, साध तेरे की चरणी पाओ, नानक कह मन इहो अनराओ। मनसा पूर्ण सरना जोग, जो कर पाया सोई होग, हरन

परम मोह दुख तह तेनासे तपत माहे ठांड वरताई अनंत पह दुख नाठे पाई। जन्म मरण के मिटे अंदेसे साधु के पूर्ण उपदेसे पहो चूका निरपाव होए बसे सकल ब्याधे मन ते खै नसे जिसका सा तिन कृपा धारी साध सांगे जप नाम मुरारी। हित पाई चूके परम गमन सन नानक हर हर जस श्रवन निर्गुण आप सरगुण भी ओही कला तहारे जिन सगली मोही अपने चरित प्रभ आप बनाए अपनी कीमत।

भगत करो प्रभ की नित नीत। एक ओट एको आधार नानक मांग नाम प्रभ सार। प्रभ की दृष्टि महा सुख होए हर रस पावे बिरला कोए। जिन चाख्या से जन तृप्ताने पूरन पुरख नहीं डोलाने। सुबर परे प्रेम रस रंग उपजा चाओ साध कै संग। परे सरन आन सब त्याग अंतर प्रगास अंदन लिवलाग। बड़ भागी जपया प्रभ सोए नानक नाम रते सुख होए। सेवक की मनसा पूरी पही सरगुर ते निर्मल मत लई। जन को प्रभ होयो दयाल सेवक की नो सरा निहाल। बंधन काटे मुक्ति जन पहया जन्म मरण दुख भ्रम गया। इस पुनी सरदा सब पूरी रव रहया सर संग हजूरी।

जब अकार एहो काशनां दृष्टेता पाप पुन तब कहते होता। जब तहरि अपन सुन समाधे तब बैर विरोध के संग कमाते। जब इसका वर्ण चिह्न न जापत तब हर्ष सोग कहो किस व्यापत। जब अपन आप पार ब्रह्म तब मोह कहा किस होवत परम। अपन खेल आप वर्तीजा नानक करने हार ना दूजा। जब होवत प्रभ केवल तही तब बंद मुक्त कहो किस को गनी। जब एक है हर अगम अपार तब नरक स्वर्ग कहो कौन अवतार। जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए तब शिव सकते कहो केत उठाए। जब आप है आप अपनी ज्योत तहै तब कवन निडर कवन कत डरे। अपन चरित आप करना हार नानक ठाकुर अगम अपार। अविनाशी सुख अपन आसन तह जन्म मरण कहो कहा विनाशन। जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए। जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस पूछते लेखा। जब नाथ निरंजन अगोचर अगाधे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे। अपन आप ही अचर जा नानक आपन रूप आप ही उपर जा। जह निर्मल पुरख पाते होता तह बिन मैल कहो क्या तोता। जह निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन कौमान कौन अभिमान। जह स्वरूप केवल जगदीश तह शल छिद्र लगत कहो कीस। जह ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे तह किसह भूख कमन तृप्तावै। कर्ण करामन करन हार नानक करते का नाहे सुमार। जब अपनी शोभा अपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सुत भाई। जह सर्व कला आप है प्रवीण तह वेदक देव कहा को चीन। जब अपन आप उरत हर तो सगन अप

जह आप रच्यो प्रपंच आकार तेहो गुण मह कीनो विस्थार पाप पुन तह पही कहावत को नरक को स्वर्ग बंछावत आल जाल माया जंजाल हमै मोह भरम भय पहार दुख सुख मान अपमान अनेक प्रकार कियो बखियान आपन खेल आप कर देख खेल संकोचै तौ नानक एकै जह अवगत भगत तह आप जह पसरै पासार संत प्रताप दुहु पाख का अपह तनी उनकी शोभा उनहु बनी अपह कौतक कर अनद चोज अपह रस भोगन निरजोग जिस पहावै तिस आपन नाय लावै जिस पहावै तिस खेल खिलावै बेसुमार अथाह अगंत अतोलै ज्यों बुलावहो त्यों

नानक हर प्रभ आपह मेले, सार संग मिलक रहो आनंद, गुण गावह प्रभ परमानंद। राम नाम तत करहो विचार, दुर्लभ देह का करहो उद्धार, अमृत बचन हर के गुण गाओ, प्राण तरन का यह सुआओ। आठ पहर प्रभ पेखो नेरा, मिटे अज्ञान बिनसे अंधेरा, सुन उपदेश हृदय बसावहो, मन इच्छे नानक फल पावहो। फलत पलत दोए लिहो सवार, राम नाम अंतर उर तहार, पूरे गुर की पूरी दिखिया, जिस मन बसे तिस

मत पूरी अमृत जाके दृष्ट दर्शन पेशत उदत सृष्ट चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप तहन सेवा सेवक प्रवान अंतर जामी पुरख प्रधान जिस मन बसै सोहोत निहाल ताक निकट न आवत काल अमर पहे अमरा पद पाया साध संग नान।

सगल समिग्री एक स घट माहे अनेक रंग नाना दृष्टा हे। नौ निद अमृत प्रभ का नाम देही महेश का विश्राम सुन समाद अनहत तहनाद कहन न जाई अचरज विस्माद। तिन देख्या जिस आप देखाए नानक तिस जन सो जी पाए सो अंतर सो बाहर अनंत कहट कहट ब्याप रहया भगवंत। तरन माहे आकाश पयाल सर्वलोक पूरन प्रतपाल बन तिन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा कर्म। पौन पानी वै संतर माहे चार कुंट दह दिसे समा

आप छोड़ बेनती करहो सार संग अग्न सागर तरहो हर तन के भर लिहो पंडार नानक गुरपूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद नरक निवार उधार हो जियो गुण गोबिंद अमृत रस पियो चित चितवह नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जियो का यह आधार उत्तम श्लोक साध के बचन अमलीक लाल एह रतन सुनत कमावत होत उधार आप तरह लोकह निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा हर रंग जय जय शब्द अनाह दवाजय सोने सोने आनंद करे प्रभ गाजय प्रगटे गोपाल महांत कै माथे नानक उदरे तिन कै साथे शरण जोग सुन सरनी आए कर कृपा प्रभ आप।

पाद पानान पान देवान देव उपमा महान दे सम्रत साहिब तन तन सतगुरु आप श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी विखे सुशोभित हो के आप जी ने सतगुरु जी दी अमृत बाणी दे अमृत रस भरपूर शब्द कीर्तन गुरु के सुगढ़ सुजान सियाने कीर्तनिया पासों श्रवण करके आनंद प्राप्त किया है। मनुख ते प्रभु दे दरमियान एक दीवार दीवार वडेरी होवे जां छुटेरी होवे जदों तक ओ दीवार पर्दे दे रूप विच मनुख ते वाहिगुरु जी दे दरमियान खलोती है उदों तक मनुख दियां ए अखां प्रभु दा दीदार नहीं कर सकदी। दीवार से काफी चौड़ाई ऊंचाई विच है पर प्रभु ते मनुख दे दरमियान मामूली जिहा पर्दा भी बड़ी वड्डी रुकावट दा काम करदा है। सोने नूं लपेटण वाले बड़े बारीक कागज हुंदे हन जे उस बारीक कागज दा पर्दा लोहे ते पारस विचकार होवे बेशक पारस लोहे दे बक्से विच पिया रहे लोहे दे नाल लगा भी रहे उस बारीक कागज दे परदे कारण कदे भी लोहा सोना नहीं हुंदा सोना नहीं बनदा। गुरु अर्जन देव जी ने मिसाल दे के दर्शाया पांबीरी के पात पर दो बिन पेखे दूर आयो चौरथ महला पे एक छोटा जिहा जीव जो कई बारी अक दे उड़ाले भी उड़दा है होर बूटिया दे चौगर दे भी उड़दा है ओदा खंभ हुंदा ते बहुत बारीक प्लास्टिक भी काफी बारीक पर कितना भी बारीक होवे फिर भी ओदे विच दी देखना मुश्किल। हजूर फरमांदे ने इना पड़दा भी वाहिगुरु ते मनुख दे जदों तक दरमियान रहिंदा है उदों तक ओ सामने भी होवे ते नजर नहीं आंदा ओदी प्रतीति नहीं हुंदी पर जिथे पत्थरां दी दीवार होवे लोहे दी दीवार होवे फिर ओ मनुख किस तरह प्रभु नूं देखेगा किस तरह प्रभु दे दीदार कर सकेगा। बहुत वड्डी दीवार

फूल देख फूल फूल बुले अहं जाग जागे देख फूल फूल बुले अहं जाग जागे करने कमल पर।

तंगम दस सत्र को जानते अमल भयंगम गिर कुम सपान तू जैस भार्यम संतिखन खान के दा

महाराज कहन लगे ये सतगुरु दे अकाल पुरख दिया बरकतां गुरु नानक दा दर है, तू बड़े हंकार दे नाल आया। जरा भाई कहना जी ये अर्थ ठीक किए उसने। भाई तन्ना सिंह कह लगे भी तेरे भी कोई है याद कविता? कहना जी मैं भी पढ़ दिना चांद कवि है जेड़ा ये मेरी कविता दे अर्थ करे। वो कह लग्या पढ़ी कविता भाई तन्ना सिंह ने। कहना मीन मरे जल के परसे, कबू ना मरे पर पावक पाए। हाथी मरे मध के परसे, कबू ना मरे तन ताप के आए। ते कहन लग्या तिया मरे पिया के परसे, कबू ना मरे प्रदेश सदाए। गूर मैं बात कही दजरा राज, विचार सके ना बिना चित लाए। ते चांद कवि नु कहन लगे क्यों, सतगुरु कहन लगे क्यों चांद जी कोई पता लग्या साधे साधे बंदे ने, सीधे साधे बंदे ने। तन्ना सिंह ने कविता पढ़ी है। कहना जी कविता तो पढ़ी है इसने, पढ़ी सारी गलती है। महाराज कहने किवें गलत है? कहने वेखो जे मीन मरे, कहना आपदी कविता च ते मीन मरे जरखे परसे, कबू ना मरे पर पावक पाए। मच्छी है जेडी अग विच तां कहना मरदी रहेगी, ते पानी विच सुटीए ते मर जांदी है। ते कहना कवि तुहाडा हाथी है जेड़ा उस नू शराब प्याते जावे तो मर जांदा है, ये गलत है। ये फिर कहन लग्या तिया मरे पिया के परसे, तन्ना कहंदा ते जेड़ी स्त्री है ओदा पति जे बाहर जांदा ते ओ ज्यों पैंदी है, जो घरे आ जांदा ते मर जांदी है स्त्री। तिया मरे पिया के परसे, कबू ना मरे परदेश सधाए। दूर ना बात कही दजराज, विचार सके ना बिना चित लाए। चांद कवि कहन लग्या जी ये सारिया गल्लां ना तन्ना दियां तन्ने दियां गलत हन। सतगुरु कहने वे तू अर्थ करके सुना तन्ना सिंह कविता जेड़ी जेड़ी ये ठीक है? कहना हां जी ठीक है। कहना सतगुरु कविता बनाने वाले जानते बंदे कि इस कविता दे विच एक नन्ना अक्षर लग्या और ना ना लगी है स्याही। मीन मरे जल के परसे, कबू हूं ना इथे दा बसराम है। ते कवि आ जेड़ा ये उल्टा पढ़ता है, इस करके ये कवि आ जेड़ा मेरी अर्था जेड़ी कविता दे कर नहीं सकया। कहना जी गलती माफ हो गई, आया तो मैं बड़ा हंकार नाल सीगा। सतगुरु कवि सतगुरु ने 52 कवि कोले रखे हैं। आओ अपना ढाडी सिंह पास कविता जेड़ी सुनिए, तो अगे बेनती कर लगे आ। गुरु गोबिंद सिंह महाराज पातशाह तख्त ते खड़ोते है, हाथ विच नंगी तलवार, चेहरा महाराज का बड़ा जलाल दे विच है। सतगुरु कहन लगे है जदो दूसरी बार तीसरी बारी तख्त दे उते खड़ोते ना आके सतगुरु ते मसंद सी जेड़े भजे भजे मां गुजरी कोले गए। कहन लगे मां औरंगजेब तो सिख मुके नहीं गए पर अज गुरु ने मुका देने, वारे वारे ना लई जांदे है फड़ फड़ के तंबू विच चटकाई जांदे है। ते पंथ मुक जूगा, लोकी दा कहने भज गए सारे डरदे हुए, पर मां गुजरी जानदी सी गुरु गोबिंद सिंह महाराज पातशाह तख्त उत्ते खड़ोते हन। तीसरी बारी कहन लगी है जिस पंथ दे मैं सरजना कर लगे हां, उस पंथ वास्ते दो सिर है जेड़े ओ बहुते नहीं, एक सिर होर भेटा करो। सतगुरु ने ओ नहीं आख्या मैनू पंज सिर चाहिए है, क्योंकि नाल सिखी दा इम्तिहान भी हो रहा सी। तीसरी बारी सतगुरु खड़ोते हन, की आख रहे हैं संगतां नूं संबोधन करदे, सुनो ढाडी जत्था क्यों बयान करदा है।

नरक एक डर है, स्वर्ग एक लालच है। तो दुनिया संसार के लोग धर्म की दुनिया में भी जा नरक तो डरी जाते हैं, जा स्वर्ग के लालची हो जाते हैं, तुरै जाता धर्म। गुरु ने इसे भी एक फैसला सुना दिता, वो ये कि स्वर्ग नरक ते मैं रहे हो सतगुरु के प्रसाद। गुरु कहिंदा नहीं, जे डर के किसी अगे झुकया तो कहदा झुकया, जे लालचा विच आके किसी की खुशामद की तो कहदी की। ना भगती डर विच हुंदी है, ना भगती लालच विच हुंदी है, बल्कि गुरु ने तो आशकी के नाम से एक गल आख दी, कह लगे एक ने ही चाकरी जित भो खत्म ना जाए, जे डर ही बनिया रहे समाज ना सके, उनके अभेद ही ना हो सके। गुरु ने आख्या ये दोनों ही अख गलत ने, एक डर से खलोता है, एक लालच से खलोता है। ब्राह्मण ने जिन्हों भी अपने पिछे लगाया होया सी, बहुत सारे लोग उनके घेरे में भी सन, क्योंकि गुरु ने बाणी में भी आख दिता जय मार्ग पंडित गए पाछे परी वही, बड़े लोग सन उनके मगर भी बड़े सन, पर वो डर करके सन, क्योंकि ब्राह्मण ने डर का हथियार वरतिया होया सी, तेनू नरक विच पा दिता जाएगा जे तू आ काम नहीं करेगा, आ दुख आ जाएगा, ये सनीचर तेरे घर में आ गया तबाह हो जाएगा। जे राहु कहती हो एक थां से जुड़ गए बस तेरा कुछ नहीं रहना। तो इन सारिया चीजों के भावें राहु कहती जुड़ जाए, भावें ग्रह आ जाए, भावें नक्षत्र आ जाए, भावें सनीचर आ जाए, इनका उपाय केवल ब्राह्मण कोल है, उपाय कराने वास्ते मेरे को ला। एक डर के अधीन सारियां अपने पिछे ला लिया, डर का हथियार ब्राह्मण को, लालच का हथियार उनके अगेंस्ट लालच का हथियार जोगी ने ले लिया। उन्हें आख्या जे मेरे पिछे लग के त्याग कर दे, पहाड़ों दी कंदरां विच बह जाए, रिद्धियां सिद्धियां तेरे अगे पईयां फिरनगियां, सारियां करामातों का तू मालक बन जाएगा, धरती ते आसमान विच तेरा पहरा हो जाएगा, तेरी उम्र इन्नी लंबी हो जाएगी, अपनी मर्जी नाल जिन्नी मर्जी उम्र बधा लें। कैसी एक लालच, क्योंकि उम्र लंबी करन दा भी मनुख नू लालच है, लालच करे जीवन पद कारण मनुख नू सुभा है कुछ, जा मनुख डर के कुछ करता है, जा लालच विच करता है। मैं देख लेना चाहना इस थोड़ी दा, ब्रह्मनिज्म ने कुछ दुनिया तक कब्जा कर लिया, उन्हें डरा के कर लिया। योगी ने कुछ दुनिया से कब्जा कर लिया, उन्हें लालच वास्त कर लिया, उन्हें दुनिया नू लालच दिखाना शुरू कर दिता, रिद्धियां सिद्धियां मेरी मुट्ठी विच ने। केड़ी अजीब गल है, जो गुरु नानक का इतिहास भी असं भाई साहब भाई गुरदास जी की रचना तो सुनने, उत्थे भी यो मसला आता। गुरु नानक नू जदों योगी योगी बनाना चाहते हैं, अपने मत में लियाना चाहते हैं, उदों लालच देंगे सिद्धि मने विचारे क्यों दर्शन ए लेवे बाला, ऐसा जोगी कली माए हमारा पंथ करे उजियाला, खप्पर दिता नाथ जी पानी भर लैमन उठचाला, बाबा आया पानी जिथे रतन जुहे हर लाला, रतन लाल जुहे राल कीमती पत्थर दे घेर लाल। तो इस ख्यालों लाए कि बाबा वापस आके पूछेगा, आखेगा मैं उत्थे गया पानी तो उत्थे है ही नहीं, इन्ने हीरे लाल जवाहरात घेर लगे, तो असं आखांगे ये हीरे लाल जवाहरात साडी करामात दी तोहफा है, असं तो पत्थरां ते निगाह पा दईए तो हीरे लाल जवाहरात बन जाए। बाबा एग्री वो भी लालची होएगा, वो आखेगा फिर यह शक्ति मैनू भी दे दो, असं आखांगे जे तू ये शक्ति लैनी है योगी बन जा। ब्राह्मण डर का हथियार वरत लिया, तो योगी लालच का हथियार वरत लिया, दुनिया नू मगर लगाने पे। यो कारण से कि ब्राह्मण

જે કોઈ કુરબાની ભી લઈ રહ્યા છે કે ડર દેતા હે જે તું આ દાન પુન ના કીતા તેરી આત્મા મરણ તો બાદ ભટકદી રહી જાયગી જે તું નહીં તો તેરે પુત્ર કોલો એ કરાવણા હી પડેગા નહીં તો તેરી આત્મા ભટકદી રહેગી આપણે પુત્રાં દી આત્મક શાંતિ લઈ ભાવે હુંદી આપણી ફિર કરમત ધરાય વાનું ઉથે જા કે કુરબાની તીરસ્તે દે દેવે લેકિન જો બ્રાહ્મણ ને આખ્યા કરના હી પડેગા નહીં તો તેરી આત્મા ભી ભટકેગી ભટકદી રહેગી તો તેરે પુત્રાં દી ભી ભટકદી રહેગી એક ડર જોગી જિથે એકઠ હુંદા સી ઉથે આપણી કૃષ્ણ દિખાઉંદા સી કથામાં પડ લો જદું જોગીયાં દે મેલે લગદે સન વડીયાં વડીયાં લંબીયાં ઉમરાં વાલે સેંકડે સાલાં દીયાં ઉમરાં વાલે જોગીયાં નું ઉથે અજે ભી લિયાંદા જાંદા દિખાણ વાસ્તે કે જંગલાં વિચ બેઠે એ જોગી કિન્ની કિન્ની લંબી ઉમર વધા લેંદે ਲੋਕ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋਗੀ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਐਸਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਵੀ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਅਤੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਭਰਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਰਤ ਹੀ ਹੋ ਸੀ ਆ ਵੇਖ ਨਾਨਕ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਕਰਮਾਤੀ ਹੋਣਾ ਇਹ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਲਾਲਚ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੀਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਟਿਕਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਖੜਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸਮਾਨ 'ਤੇ ਉੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੁਣ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਸੀ ਦੋ ਇੱਕ ਰੂਪ ਇੱਕ ਨੇ ਲਾਲਚ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤ ਲਿਆ ਇੱਕ ਨੇ ਡਰ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤ ਲਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਲਕ ਦੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਲਾਲਚ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡਰ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਸੁਰਗ ਨਰਕ ਤੇ ਮੈਂ ਰਹੇ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਮੌਜ ਮੈਂ ਰਹੋ ਅੰਤ ਆਰਾਤ ਮਰਨੇ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀਵਨ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆਸ ਇਹ ਫਰਕ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅੱਜ ਦੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਪੱਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗਿਰੀ ਦੇ ਕਾਬਜ਼ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇਜ਼ਮ ਦਾ ਇਰਖ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੂਨ ਧਰਮ ਕਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੀਤ ਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁੱਚਾ ਰਹੋ ਉਹਦਾ ਪੇਟ ਖੋਲੀ ਗਏ ਨੇ ਪੰਜ ਛੇ ਪੌੜੀਆਂ ਤੱਕ ਅੱਜ ਹੁਣ ਜੋਗੀ ਵੱਲ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋਗੀ ਵੱਲ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਲਾਲਚ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀਵਨ ਲੰਬਾ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਮੇਰੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਮੇਰੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲਾਲਚ ਹੈ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਭੋਗ ਭੋਗਣ ਲਈ ਪਦਾਰਥ ਹੋਣ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੋਣ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਜੋਗੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਲੇ ਆ ਇਹ ਉਮਰ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕਿ ਤੂੰ ਜੋਗੀ ਬਣ ਜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੋਗੀ ਹੋ ਮੈਂ ਵੀ ਜੋਗੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਰਾਜਨ ਮੈਂ ਬੈਰਾਗੀ ਜੋਗੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜੋਗੀ ਮਰਤ ਨਾਲ ਸੋਗ ਬੇਹੋਗੀ ਮੈਂ ਤੇ ਤਿਆਗੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤਿਆਗੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਤਿਆਗੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਮੌਤ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੋਗੀ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਉਹ ਮੈਂ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਜੋਗ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਹਿਜ ਜੋਗ ਹੈ ਆਪਣ ਜੋਗੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੱਥ ਜੋਗ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਮਨ ਹੱਥ ਜੋ ਕਮਾਵੇ ਸੋ ਕਹੀਂ ਨਾ ਲੇਖੇ ਪਾਵੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੱਥ ਜੋਗ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੱਥ ਕਰ ਮਰੇ
ना लेके पावे, वेस्ट करे, वो पसंद लगावे, कोई फायदा नहीं। कहन लगे तेरे को हाथ जोग है, मेरे को सहज जोग है। तू हाथ करके मरने ते मेरे सामने ऐसा सहज आ गया, सहज का दूजा नाम ही हुक्म है, हुक्म है। दिन सहज सहसा न जाए, न जाए सहसा कित संयम रहे कर्म कमाए, सहसे जीव मलीन है कित संयम धोता जाए, मन धोवो शब्द लागो हरसों रहो चित लाए, कहे नानक गुर प्रसादी सहज जितने। सहज की है गुरमुख अंतर सहज है, मन चढ़िया दसवें आकाश, दसवें आकाश दसम द्वार, योगी भी कहता है। कह लगे तू भी पवन का सहारा लेना, मैं भी पवन का सहारा लेना, ते योगी तू भी योगी है मैं भी योगी है, तू भी पवन के सहारे योग कमाना मैं भी पवन के सहारे योग कमाना, तू श्वास रूपी पवन न चढ़ा तो दसम द्वार विच जाके टिका लेना, उठे रोक लेना, ते मैं पवन रूपी शब्द है गुरु है पवन गुरु, मैं अपने जीवन विच चलाऊना शब्द नू ते जाके सुरती दे दसवें द्वार विच उनू टिकाना दे देना, उनू कहना शब्द ते सुरत दा मेल, जो भी तू नहीं है ते मैं भी हूं, तेरे कोल भी पवन है मेरे कोल भी पवन है, तेरे कोल पवन स्वास ने मेरे कोल पवन गुरु है पवन शब्द है, तू उस पवन स्वासा चढ़ा के दसम द्वार विच रोकना, ते मैं शब्द नू अवस्था विच चढ़ा के जाके सुरत विच रोक लेना, उत्थे उनका टिकाणा बना देना, उत्थे शब्द की रहायश हो जाती, जदों शब्द सुरत विच जाके बह जाता है ना, उस सुरत विचों ही मन बनता है, उस सुरत विचों विचार बनते हैं, उस सुरत विचों विहार बनते हैं, सारा जीवन मेरे को सहज आ जाता है, मेरा योग सहज योग है। हुण तू मन हट करके मर रहे पर मैं सहज की दुनिया में मरण के जीवन नू बराबर समझ रहा, गुरु ने बाणी भी आख दिता, कहने लगे मरनो मरन कहे सब कोई, दुनिया मौत दी गल्लां करदी किसी मरना होता ही नहीं, मरनो मरन कहे सब कोई, अगली लाइन में कहने लगे सहजे मरे अमर कोई सोई, अजिना शहीदों के दिन मनाते हो ना, यह हठ कर नहीं मरी सहज मरी, क्योंकि इन्हों मरन के जीवन में कोई फर्क ही नहीं दिखाया, जिस मरण जीवन नू असी लै के खुशी गमी नाल जोड़ लिया ना, दुख सुख नाल जोड़ लिया, उत्थे दुख सुख मरण जीवन का खत्म हो गया, मरण जीवन जो सम कर जाने, सो मेरे मन पाएगा सहज जेड़ा है वो मरण ते जीवन दुख सुख नू एक कर देता है, ते सहज दा ना इसे लई हुक्म नाल संबंधित है, क्योंकि हुक्म विच जाके मनुख आखदा जे सुख देन तां तुझे आराधी दुख भी तुझे दिया, जे भुख देन तां तही राजां दुख विच सुख, जिव तुम राखो तिव ही रहना, जो तुम कहो सोई मुल करना, सहज सहज होता जाए सोए, मैनू कोई फर्क नहीं पड़ता, ते सहज अवस्था मैं शरीर विच होवां जां ना होवां, मैं शरीर नू माना जा लेखे ला दिया, मैनू कोई फर्क नहीं पैदा, इथों शहीदी पैदा होंगी, मरण जीवन जो सम कर जाने, ये हठ कर मरे नहीं, ये सहज जी मौत है, तो गुरु ने इसे लिए आख दिता, कहन लगे मरनो मरन कहे सब कोई, सहजे मरे अमर हो सो, हुण जोगी कोल सहज है नहीं, उनके कोल हठ है, उनू इन्ना ही नहीं पता कि आरजा जिहड़ी है वो तेरे मेरे वस नहीं, गुरमत आखदी है मरण लिखाए मंडल में आए, संसार विच जदों आउंदा है ना मरण लिखा के आउंदा, तेरे हाथ की है तू आरजा लंबी कर ले, तू श्वास नहीं बना सकता, लो आ एक टैक्ट है जिहड़ा समझ लो योगी लगता, वो है हठ साधना,
तू अपनी आर्जा स्वास्थ्य करके नहीं बढ़ा सकता, स्वास्थ्य तेन जिन्ने लिखे ने उन्ने ही मिलने। तू बड़ा सियाना निकलिया, चातर निकलिया, तू आखिया मैं इन स्वास्थ्य वरता उन्ना ही रहनगे उन्ना ही, पर इन रोक लव ये 50 श्वास ने ते एक दो घंटे मैं श्वास लवा ही ना, 10 दिन मैं श्वास लवा ही ना, 50 दिन मैं श्वास लवा ही ना, तो श्वास तो फिर रुक गया, श्वास तो नहीं रहने, वो तो तेरी मौत है। हम मुड़के जो आने शुरू हुए गिनती फिर हो शुरू हो गई, वो आर्जा बद गई, ते आर्जा बधी किमें, वो दरमियान का हिस्सा तो जिया जा जिया जिया जाना, जो जिन्हों वो कहता मैं दसवें द्वारा स्वास चढ़ाए ने उदों की है, उनका कर्म खत्म हो गया, कर्म तो खत्म हो गया, तो जीवन मिले से कर्म ले कर्मबद्ध जीव दीन दे, जो दसवें द्वार में स्वास जोग नहीं रोक लिया कर्म खत्म हो गया। मैं कल कह रहा अज की साइंस की दुनिया में इस गल अपने तजर्बे साइंसदाना ने भी लिया है, अमेरिका भी बकायदा ऐलान हो गया, वीर पढ़े लिखे बैठे ने विद्वान सज्जन जी साइंस नाल भी संबंध रखते हैं, अज के साइंसदान ने एक ऐलान किया कि जे कोई मनुख अज तो 50 साल 100 साल बाद की दुनिया वेखना चाहे किवें वेखे, वो कहता भी मैं हूं की दुनिया कुछ 10-20 साल देख ली, मैं 50 साल बाद की दुनिया देखना चाहना, 100 साल बाद भी देखना चाहना, वो कहना दिखा सकता दिखा सकता, उनका भी उन्हें तरीका जोगियों वाले कढ़िया है, उस श्वास रोक देंगे ने शरीर फ्रीज कर देंगे पर लिखा लेंगे ने, पहला बड़ी वीडी फीस है इस उन्हों की क्रिया की, तुम बेशक साइंस खेत्र पढ़ सकते देख सकते, वो कहते हैं तू लिख दे कि मैं 100 साल बाद की दुनिया देखना चाहना, मुड़ 100 साल बाद मेरा कर्म फिर शुरू हो जाए, क्रिया फिर शुरू हो जाए, वो लिख दे वो प्रिजर्व हो जाएगा, तेरे शरीर में फ्रीज कर देंगे ताकि गले ना खराब ना हो, श्वास रोक देंगे, वो तेरा फार्म भरिया होया प्रिजर्व हो जाएगा, 100 साल बाद साड़ी इस श्रेणी साड़ी इस संस्था विचों जेड़ा भी मुखबर आगू होएगा वो ठीक 100 साल बाद मुड़ तेरे शरीर में फ्रीज विचों काढ़ के मुड़ गर्म करके उस श्वास चालू कर देगा, मुड़ तेरी क्रिया शुरू हो जाएगी, तू जिंदा हो जाएगा। अज बेशक साइंसदान को पुछ सकते हो, अब फिर एक क्रिया जोगियों वाली तो कर्मबद्ध जीव देन वे जो जीवन है वो तो कर्मबद्ध है, कर्म खेत्र है, तो जब श्वास तू रोक ले मुर्दा हो गया, हां बैठा है, तू आप देता 10वें द्वार श्वास चढ़ गई, योगियों ने यो काम किया कई कई महीने 10वें द्वार श्वास चढ़ा के एक साधना राही एक उस चट रंग जो अब साइंस ने नहीं पैदा कर लिया उनके रही श्वास चढ़ा दियो, कर्म खत्म हो गया, कर्म का कोई संबंध ना रहा, जरा जीवन का संबंध से खत्म हो गया, 10 दिन 20 दिन महीना 2 महीने बाद मुड़ श्वास शुरू होए, कई बार तो दूजे योगियों आके बड़ी मुश्किल नाल उस श्वास मुड़ चालू करने पैंदे, चालू हो गए मुड़ क्रिया शुरू हो गई, जीवन तो उत्थे शुरू होना है क्योंकि कर्म तो शुरू होना, कर्म बद जी उदीन तो साइंसदान भी जेडे टैक्ट नू जेडे कृष्णे नू आज कर रहे हैं जोगी अपने धर्म का अंग बना बैठे, वो अपनी उम्र लंबी कर ले, तो लोगों ने आख्या बड़ी वड्डी गल है, उम्र भी अपने हाथ में हो गई है, 200 साल का पुराना जोगी अजे तक जीवंदा बैठा कृष्ण, इन्ना वड्डा जोग मत दी शक्ति अपनी मर्जी ना उम्र बढ़ा दे, भलिया उम्र बढ़ा नहीं सके, स्वास ओने ही रहे ने जेड़े उन्हें मेरे मालिक ने लिख के दिते ने, इन्हें उन्होंने स्वास्थ्यों की वरतों नहीं की, इन्हें कर्मबद्ध जीव दीन दे इसलिए जीव की वरतों ही नहीं की, कर्मबद्ध नहीं गया, कर्म तो बिहूना जेड़ा है जो मौत होंगी उदो की होंगे, कर्म ही तो खत्म होंगे ने, शरीर तो होंगे अखा होंदिया ने देख नहीं सकती, जबान होंगी है बोल नहीं सकती, हाथ होंगे ने कर नहीं सकते, कर्म खत्म हो जाता, मौत की है जो कर्म खत्म हो जाए, जीवन की है जो मन कुछ करता रहे कभी शक्ति आ जाए, इसलिए कर्म बद जीव दीन वे, उन्होंने 10वें द्वार श्वास चढ़ाने का जेड़ा मकसद की उस रोकन का मकसद की उस पवन के श्वास न
रोक के उम्र लंबी करना ते लोगों नूं एक भरम विच पाउणा कि देखो साडी योग मत विच इन्नी शक्ति है कि असी उम्र भी अपनी हाथ विच अपनी मुट्ठी विच लै लईए जिन्ना चिर दिल चाहे असी जीव सकने। गुरु कहन लगे भलिया मेरे कोल है सहज योग जिंदे नाल शब्द पमन रूप गुरु जीवन दे हर हिस्से विचों चलदा चलदा चलदा सुरती विच जाके टिक जांदा उत्थे सहज पैदा हो जाता है। शब्द जदों सुरत नाल मेल करदा है ना उदों जीवन की अवस्था विच सहज आ जाता है ते उस सहज नाल इस शरीर का जीवन लंबा करन दी लोड़ ही नहीं महसूस करता उदों आत्मक जीवन चिरंजीव हो जाता है। प्रवान तो आत्मक जीवन है कर्म तो आत्मक जीवन का एक दरवाजा है उत्थे तक पहुंचाने वाला इसलिए गुरु ने आख दिता ज्ञाने कारण कर्म अभ्यास है कर्म तो उसे दरवाजे तक पहुंचाने वाला है ज्ञाने कारण कर्म अभ्यास ज्ञान भया तो कर्म नाश बस उसे दरवाजे तक खड़ोगे हम कर्म की लोड़ कोई नहीं। गुरु ने आख्या इसलिए सहज ही असल अवस्था है मेरे को सहज है तेरे को हाथ योग है इसलिए तेरा मेरा मेल नहीं। जे तू मैनू अपनी किस्म का योगी बनाना चाहे जिहड़ियां लंबियां आरजा केवल शरीर दियां बना बना के हाथ योग नाल दुनिया नू किस्में रिद्धियां सिद्धियां दिखा दिखा आखे देखो मेरे कोल इन्नी ताकत है इन्नी दिव्य दृष्टि है मैं नवां खंडां विच जा सकना उडारी लगा के हर थां दे होर इस सारे किस्मियां नू जान सकना। उन्हें बाणी विच आख दिता कहने लगे मैं देखदा की है ऐसा मनुख जिहड़ा कहिंदा मैं तिन्ना लोकां दी सार जानना काल नाहीं योग नाहीं नाहीं कसत सच का टब थानिस्त जग प्रहिष्ट होए डूबता इव जग कल मैं राम नाम सार अखी त मीटे नक पकड़े ठगन को संसार। अगे जाके कहन लगे मगर पाछे कछ न सूझे ए पद्म रोए आखदा मैनु तिन्ने लोग सिखदे नी सूझते तिन लोग पर मगर पाछे कछ न सूझे ए पद्मा लो। पर होया कि इहो जे किश्मे वेख के खतरियां तां तां छोड़िया मलेश पासिया गई सिख सब एक वर्ण होई धर्म की गल मनुख धर्म विच बड़ी जल्दी पुजदा है ते जदों इहनू अपनी मर्जी की कोई चीज कितने दिखा देवे भावें डर दिखा देवे ते उहदे कोल डर के पिछे लग पैंदा है जे कोई लालच दिखा देवे उहदे कोल लालच के पिछे लग पैंदा। गुरु ने पिछलियां पौड़ियों में डर दिखा के पिछे लाने वाले लोगों का जिक्र किया ते आज जेड़े लालच दिखा के पिछे लाने वाले सन उन्हां कोल सब तो वड्डा लालच सी मनुख लंबा समा जीना चाहता है। योगी ने इस लालच नाल मगर लाया हुआ ते गुरु इस गल का जवाब इस पौड़ी दे रहे लो ये बेस है इस पौड़ी। गुरु कहते हैं जे जुग चारे और जा ओ पलिया 100 200 400 साल की उम्र तक कुछ भी नहीं

चार युग आरजा हो जाए। इस नालों दस गुना चाली युग आरजा हो जाए। नवा खंडों में तेरी वापसी तेरा पैरा हो जाए, तेरी पहुंच हो जाए। दुनिया के बहुत सारे लोग तेरे पिछे तुरन जेड़े पासे जाए। यही चीज आप आज भी देख रहे हैं, साधु संत देख रहा भी लोग भी लोगों ने किस्मियां पिछे लाने की कोशिश करते, बड़े उन्होंने चर्चे होंगे ने फलाने को बड़ी करामात, लोग पिछे तुरते हैं। गुरु कहन लगे जे भला लखां लोग अनगिनत लोग तेरे पिछे भी तुर पे, तेरा नाम भी बड़ा मशहूर हो जाए, तेरा मत भी बड़ा चलन लग पवे। यही गल आई थी ना भाई साहब भाई गुरदास जी के लफ्जों कि वह आखते सन ऐसा जो भी कलीमा है हमारा पंथ करे उजियाला, साडा नाम बड़ा हो जाएगा, साडे मत का नाम बड़ा हो जाएगा। गुरु कहन लगे जे भला चंगा नाम रखाए तो जस पीरत जग ले, संसार के लोग उपमा करना आखन फलाना बड़ा बंदा है, इन्ना शक्ति वाली इनिया रिधिया सिद्धियां उनके कोल ने, उसकी आरजा अपनी मर्जी नाल बधा लेंदा। गुरु कहंदे ने भलिया जे रब की निगाह विच तू परवान न होया, क्योंकि यह चीजा मेरे मालिक नूं चंगीआं नहीं लगदियां। रिध सिद्ध अपना साध है, यह तो रड़ा की रुकावट नहीं। चल इतने हर मिलन को बीचे अटके उसकी राह विच रुक गया, रिधिया सिद्धियां तीख लो, रिधिया सिद्धियां तीख लो। पुरातन समय की जी एक साखी आती है ना, वो साखी लॉजिकता के रूप में देखे वो एक केवल तो केवल प्रेरणा ही है। कि गुरु नानक आखते ने आ सोना चांदी लैके वापस चले जाओ, आ हीरे लाल जवाहरात लैके वापस चले जाओ, कुछ लैके चले जाते उ रुक जाते, जे आखिर रह जाते उन्होंने कहते हैं मुर्दा खाओ। असल में कुछ साखियां प्रेरणा विचों असी कहानियां कर लिया, उत्थे तां इह सिखाया पढ़िओ जिहड़ी मौत है ना इन छक जाओ, भाव इनकी परवाह ना करो, आओ फिर जिन्हें मेरे को आना है उन्हें जीवन मेरे समर्पण करना पड़ेगा, उन्हें जीवन मौत का भय कढ के सहज में आना पड़ेगा। गुरु ने बाणी भी आख दिता पहला मरण कबूल, जीवन की छड आस हो सबन की रेणका, तो आओ हमारे पास, आ मेरे पीछे आना। प्रेरणा स्रोत बचन ओ जेडे सतगुरु के महान बचन जीवन को प्रेरणा देंगे ने, वो छड़ के असी सौखियां कहानियां कर लेंगे, तो जड़िया सिर्फ इन्ना ही साबित कर सतगुरु भी उन्होंने रिधिया सिद्धिया वागू करामाती सन, करामात ही दिखाते सर। हालांकि गुरु की गल भाई साहब आप ही अपनी रचना तो आख रहे हैं, गुरु संगत बाणी बिना दूजी ओर नहीं है रही, बाद में सच्चे नाम से होर करामात असा से नहीं, मेरे कोई होर करामात नहीं, मेरा कोई संबंध नहीं, गुरु को सहज है, जिस सहज में किसी करामात दिखाने की लोड़ ही नहीं, जो मेरा मालिक करे आज्ञा में भूख सोई कर चुका कल भी तो कर, सोग हरख नहीं जाने, गुरमुख अंतर सहज है, मन चढ़िया दसवें आकाश जिथे ऊंग ना भुख है, जिथे ऊंग ना भुख है हर अमृत नाम सुखवास, जिथे दुख सुख व्यापत नहीं, उथे तो दुख सुख पहुंचना ही नहीं, उथे तो हर सोग पहुंचना ही नहीं, उथे पहुंच ही कोई नहीं। पर गुरु कहते ने भलिया तू इन्हें आरजा का लालच दिना, तो मैं तो सिख नूं इह समझाना चाहना